सगले साज करत जगदीश है, ठगन हार अनठग दा ठग है, बिन मखर फिर उठ लागे। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परम गत होए। रामकली महला पंजवा, जो तिस पावे सो थिया, सदा सदा हर की शरण आई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै, इनमें किशु ना संग लिया, बिखैठ गौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाध रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिने निवाजे तिन्ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। रामकली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल, जाकी तूर काट जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाकै मस्तक रखै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसै अभमान, एक तिहाई साधकै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देहे तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल मैं होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक आरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आप। राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन।

बिरद पायो अजहू नहीं समझ कौन कुमाते उर जाना। मानस जन्म दियो जे ठाकर सो तै क्यों बिसरायो। मुक्त हो तो नर जा कै समरै निमखना ता को गायो। माया को मद कहां करत है संग न कहूं जाई। नानक कहे तो चेत चिंता मन होए है अंत सहाई। हराम कली महला पहला अष्टपदियां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े से तारे सोई दियर तप्त रहै। सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाव कैसे। जीवन तलब निवार होवै प्रवाणा करै तिंगाणा कल लखण विचार। रहाओ कितै देस ना आया सुनिया तीर्थ पास ना बैठा। दाता दान करे तह नाही महलो सार ना बैठा। जे को सत करे सो छीजै तब कर तप ना होई। जे को नौ ले बदनामी कल के लखण एई। जिस सिकदारी तिसै खुवारी चाकर के हे डरना। जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथो मरना। आह गुणा कल आई है तेह जो केरा रहा तपावस। जे गुण देह ता पाई है रहाओ। कल कल वाली सरा निबेड़ी काजी कृष्णा होवा। बाणी ब्रह्मा बेदा थरबण करनी कीर्त लहया। पातविण पूजा सतविण संजम जतविण काहे जनेऊ। नावो तोवो तिलक चढ़ावो सोचविण सोच ना होई। कल प्रमाण कतेब कुरान पोथी पंडित रहे पुराण। नानक नाओ पया रहमान कर करता तू एको जान। नानक नाम मिलै वड्याई एदू उपर कर्म नहीं। जेकर होंदै मंगन जाइए फिर ओ लामा मिलै तही। राम कली महला पहला जग पर बोधै मड़ी बधावै। आसन त्याग कहे सच पावै। ममता मोह कामण हितकारी ना उदूती ना।

क्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए, भस्म चढ़ाए करै पाखंड, माया मोहे सहजम दंड। फूटै खापर पीख ना पाए, बंधन बांध्या आवै जाए, बिंदना राखै जति कहावै, माई मांग तो त्रै लोभ आवै। निर्दया नहीं जो तो जाला, बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला, पेख करै खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेलै बहु नटुआ। अंतर अगन चिंता बहु जारे, विणकर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जेहवा इंद्री साध लोबाना, पशु पय नहीं मिटै निशाना। तिरबद लोगा तिरबद जोगा, शब्द विचारै चूक सोगा, उज्जल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए। तुझ पह नौ निद तू करना जोग, थापो थापे करे सोहोग। जात सत संजम सच सोचीत, नानक जोगी तिर पवन मीत, राम कली महला पहला। खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तोने अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरबचनी सचनाम पतीना। प्राणी राम पग सुख पाई है, गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाई है रहाओ। माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर पेटा मिल मिलाए, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन तीरा। हम मैं ममता रोग न लागे, राम पग जम का पो भागे, जम जम दार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे। शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी। अंदर जाग रहे लिव लाई, जीवन मुक्त गति अंतर पाई। अलिप्त गुफा में रहे निरारे, तस्कर पंचो सब संगारे। पर कर जाए न मन डोलाए, सहज निरंतर रहो समाए। गुरमुख जाग रहे अवधूता, सतवै रोगी तत् परोता। जग सूता मरिया वह जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द वजै दिन राती, अवगत की गत गुरमुख जाती। तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहा निर्वानी। सुन समाज सुन समाध, सहज मन राता, तजहो लोभा एको जाता। गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला। साहा गणे ना करे विचार, साहे उपरे एकंकार, जिस गुर मिले

प्रभु की जय। राम कली महल्ला पहला, अंतर उत्पुजे अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रभते होई, जुगे जुगंतर साहिब साहि सोई, उत्पुत परलो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल, जेवा सूची साचा बोल, करदर साचा नाही रोल, एक बन में बैसे डूगरिया स्थान, नाम विसार पचाया अवमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, हठ हंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना त्रिपतावे पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा, कर्म मिलाए पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो।

खंडी हुक्म बुझै सो जोगी कहिया एक स्यों चित लाए सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए नदरी आवंदा सब किश बिनसै हर से ती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सो जी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करै ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करै जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जो जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों परम चुकाए विण वजाई किंगरी वाजै जोगी सा किंगरी वजाए कह नानक मुक्त होवै जोगी साचे रहै समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजै तिसते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर न देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै कट अंतर सच्चे सो लिव लाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड्डे पाग पाया जाई परम ना चुकाओ सतगुर सेवाओ मन रखो इकठाई बिन नाम सब पूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी में आसन बैसै गुरसबदी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई एहो शरीर सरवर है संतो इशनान करे लिव लाई नाम इशनान करै से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेतै नाही बिन नामै बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूर्त त्रै गुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटै चौथे पद लिवलाई पंडित पढ़ै पढ़वाद वखाणै तिन्ना बूझ न पाई बिखिया माते परम पुलाए उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई

मनसा मार मन सह समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई हां गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई बिन नामे होर पूजना होवी भरम भुली लोकाई गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाई आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई एहो मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मिलाई गुरमुख गावे आप गवावे दर साचै सोभा पाई साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिवलाई पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई सब किश आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी मिल शब्दे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वस्या कट अंतर करतै आप सवारी रहाओ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचों आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी अपनिया भगता नो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम बिचारी शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूजे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए, सिर सिर तंदै लाई, तिसै श्री बो तां सुख पावो, सतगुर मेल मिलाई। अपना आप आपो पाए, अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे, तिसनो तिल ना तुमाई।

सगले उदार, ज्यों पावक संग सीत को नास, ऐसे प्राहित संत संग बिनास, ज्यों साबन कापर उज्जल होत, नाम जबत सब ब्रह्म पौखोत, ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों चात्रक बूंद की प्यास, ज्यों कुरंक नाद करन समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ताय आए चीत, दया तारी तिन तारनहार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैण आलोए, तिस बिन दूजा अवर न कोए, भ्रम पै छूटे गुर प्रसाद, नानक पेख्यो सब बिस्माद, राम कली महला पंजवा, जी जंत सब पेखिया, प्रभ सगल तुम्हारी धारणा, एहो मन हर के

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग विदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्य वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। करण कारण समर्थ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायन एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसच लाए तराई। अपने जीता आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपो काले अंधकार दी पाई। अंतरजामी जियन का दाता देख तृप त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बने आई। संतो सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास को दिया सगली तृष्ण उलाही। संतो रहाओ खोजत खोजत लालिक पाया हर कीमत कहन ना जाई। संतो चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचा दर्श समाई। संतो गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई। संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई। संतो आदि जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई। संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई। संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई। संतो राम कली महला पंजवा मन बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी। उदरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगति जो तुम्हारी। तुम समराथ्या काथा गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत कौन

तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा जिस दिया ये वडे आईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुजन कहो से नाम हर कै लागे कहे नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिंदे निमाणी देह निमाणी लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया तुद बाज समर्थ कोए नाही कृपा कर बनवारिया एस ना होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मुह त्रुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक हो आनंद है आनंद गुरते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावै पावै ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिरै दै दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावै कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै आवहो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईऐ तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने पाईऐ हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने ना पाया चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत परम पुलाया माया ता मोहनी तने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तसै विटो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई है ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगमा गोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख बखाने आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत्यो पाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तो दियो पाए एक वेख परसने आया लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया।

लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना। गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए हे तिवै चल है, जिन्ना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्यावहे। जिसनों कथा सुना है अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहेब, जो पावै तिवै चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन वसिया, जिन तुरों लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करै गल्ला, गली किनै ना पाया। कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेजना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित संगत सवाईया। कहिंदे पवित सुनदे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै, विण सहजै सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कुमाए। सहसे जियो मलीन है, कित संजम तोता जाए। मन तोहवो शब्द लागो, हर स्यो रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाए।

मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखाओ विण सतगुर मुक्त ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कहो नदर कर्म होवे हृदय तना समाणी। पीवहो अमृतो सदा रहो हर रंग जपयो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करे रसना कहया कछु ना जानी। चित जिनका हिर लया माया बोलन पए रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनों दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकत आपो पाए कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख सह बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनों आप करे सो होवे एक सो लिव लाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी। तिही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहण विहानी। गुर कृपा ते सेजन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कह नानक सो तत् पाए जिसनो अंदन हर लिव लागे जागत रहण विहानी। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है ए वरदाता जे अग्न में आहार पहुंचावे ओसनो केहो पोहे ना सकी। जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है कह नानक के वरदाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया। माया अग्न सब एको जेही करता खेल रचाया। जात पाणा ता जमया परिवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसर मोह उपजै पाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक मिल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सोपी है विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए। हर आप अमुलक है भागत ना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मन वनजारा हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपियो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी एहो तंत ना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन होवा वनजारा ए रसना तू अन रस राच रही। तेरी प्यास ना जाए होरत कितै। जिचर हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पीए। हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाईए। सतगुर मिले जिसे आए कहे नानक होर अन रस विसरे जा हर वसे मन आए। ए श्रीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हरे आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापै। गुरचरण लागे दिन सपागे अपना पिर जापै।
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਓ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਏ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਾਚੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸੁਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹੋ ਗਾਵਹੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰ ਸਾਚੈ ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵਹੇ ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵਹੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵਹੇ ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾ

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछल ते हलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रवाणा फिर नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया मित पै जाए मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु प्रतख होंद बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंड सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह पाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोए अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोया कटकट सोया अत अमृत प्रे गूड़ा नाल होवंदा लहना सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा माया मदमाता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नहीं सूजै हर साजन सब कह निकट खड़ा गोबिंदा मेरे गोबिंदा प्राणिया धारा मेरे गोबिंदा कृपाला मेरे कृपाला दान दातारा मेरे कृपाला दान दातारा प्रापारा कट कट अंतर सोहने आ एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहने आ जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द बिचारा कहो नानक जो प्रभ को पाणा तिस ही कहो प्रभ प्यारा मानो प्रभ मानो मेरे प्रभ का मानो जानो प्रभ जानो स्वामी सुगुड़ सुजानो
सूड़ सुजाना सत परदाना अमृत हर का नामा चाख्या गाने सारंग पाने जिनके पाग मथाना तिन ही पाया तने ते आया सगल तसै का माणो कहो नानक थिर तख्त निवासी सच तसै दी बाणो मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहेलड़ा प्रभ सोहेलड़ा अनहद तुनिए सोहेलड़ा अनहद वाजे सब दया गाजे नित नित जिसै वधाई सो प्रभ त्याई है सब किश पाई है मर न आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुनिया कहो नानक कर प्रभ मेरे कै नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवा हर हर त्याय मना खिन्ना विसारी है राम रामा राम रमा कंठ उरतारी है उरतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसै दुख पव खंडनो जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलख पंडार नाम अनंत तरा नाम नर हर निधान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायणा किल विखहरना नाम पुने चरना नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोय न जान नहीं देख चलत दयाल सुन भगत वखान नहीं जी जंत सब तो इतिहावै पुरख पत परमेसरा सर्व जाच के एक दाता करना मैं जगदीसरा साधु संत सुजान सोई जिसै प्रभ जी मान नहीं बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछान नहीं मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरदेव जिन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया जलने बुझाई सांत आई मिले चिरी विशुन्या आनंद हरख सह साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया राम कली महला पंजवा रुण चुनो सबदा नाहद नित उठ गई है संतन कै केलविक सब दुख बिनासनो हर नाम जपिए गुरमंतन कै हर नाम लीजे अम्यो पीजै रहन दिन स्यारा दिए जोग दाना नेक किरिया लग चरण कमल ऐसा दिए पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर त्याय स्वामी नर हरै सुख सागर गोबिंद सिमरन भगत गावै गुण तेरे राम आनंद मंगल गुरचरणी लागे पाए सुख कनेरे राम सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परमपो पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दा मोदर माधो अंत न पाई है गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नामो उदाहरणो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरणी लाए राम आठ पहरे अपना प्रभ सिमरै एको नाम त्याए राम त्याए सो प्रभ तरे पव जल रहे अवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना सब इच्छ पुन्नी आस पूरी मिले सतगुर पूरिया बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख विसूरिया राम कली महला पंजवा शंत सलोक चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुणगाम नानक प्रभ आराधी है विपत निवारण राम शंत प्रभ विपत निवारणो तिस बने अवर ना कोए जियो सदा सदा हर सिमरी है जल थल मैयल सोए जियो
ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਰ ਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨਸ ਭਾਗੇ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ, ਕਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਦਿਨਸ ਰੈਣੀ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਜੀਓ, ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖੈ ਦਾਤੇ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੰਤਨ ਹੋਏ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ, ਬਿਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਸੋਚ, ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਗੋਪਾਲ ਕੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਕਟ ਮੋਚ। ਸ਼ੰਤ ਪੈ ਸੰਕਟ ਕਾਟੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਇਆਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਅਚਿਤ ਪੁਰਖ ਏਕੋ, ਤਿਸੈ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਗਾ, ਕਰ ਚਰਨ ਮਸਤਕ ਮਿਲ ਲੀਨੇ, ਸਦਾ ਅੰਦਨ ਜਾਗਾ ਜੀਓ, ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਿਹੋ ਥਾਨ ਤਿਸਕਾ, ਤਨ ਜੋਮਨ ਤਨ ਮਾਲ ਜੀਓ, ਸਦ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰ ਹਰੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਵਖਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਏਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖੈ ਨਿਦਾਨ। ਸ਼ੰਤ ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਕੋ, ਅੰਚਲ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗ ਜੀਓ, ਭਜ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦਇਆਲ ਦੇਵ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਓਟ ਕੀ ਜੈ ਜੀਓ ਦੀ ਜੈ, ਆਸ ਇੱਕ ਤਰਨੀ ਧਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਭ ਤਰੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੇਕਾਰ ਛੂਟੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗ ਜੀਓ, ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ, ਥਿਰ ਜਾਂ ਕਾ ਸੁਹਾਗ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਧਰਮ

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुभोए चित वसै राचे हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुले एक गंड, छे अन देखो जगहंड, धूप छाव जे समकर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पई सिवाल। जापै आप प्रभु त्यो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए। ज्यो पावै त्यो राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलै ता तुजै समावा। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पे आस निरासा।

एव छूटै फिर फास ना पाए, बीरा बीरा कर रही बीर पय बैराए। बीर चले कर अपने बहन बरै जल जाए, बाबुल कह कर बेटड़ी बाली बालै ने, जे लोड़ै वर कमनी सतगुर से वैते हे। बिरलो ज्ञानी बुझना सतगुर साच मिले, ठाकर हाथ वडाइया जय पावै तें दे। बाणी बिरलो बिचार सी जे को गुरमुख होए, एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। पन पन कड़ी है कड़ कड़ भजै, टाहे उसारे उसरे टाहै। सर पर सुख है पी पर पुख है, समर्थ वे परवाह है। भरम भुलाने पे दीवाने, विण भागा क्या पाई है। गुरमुख ज्ञान डोरी प्रपकड़ी, जिन खिंचै तिन जाई है। हर गुण गाए सदा रंग राते, बहुण न पछोताई है। पब्बै पालै गुरमुख बूझै, तन कर वासा पाई है। पब्बै पौजल मार्ग विखड़ा, आस निरासा तरी है। गुर प्रसादी आपो चीनै, जीवत्या इव मरी है। माया माया करम ए, माया किसे ना साथ। हंस चले उठ डुमनो, माया पुली आथ। मन झूठा जम जो है।

तुमाई। क्यों तत्तै अवगतै पावै, गुरमुख लगै प्यारो, आपे सुरता आपे करता, कहो नानक बिचारो। हुक्मे आवै हुक्मे जावै, हुक्मे रहै समाई, पूरे गुरते साच कमावै, गत मित सबदे पाई। आद कहो बिस्माद विचार कथिया ले, सुन निरंतर वास लिया, अकलपत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारिया ले, कट कट साचा सर्व जिया। गुर बचनी अवगत समाई है, तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी, सेवै सिख सो खोज लह। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणै, जी जुगत सच जाणै सोई, आप मेट निराल मोहवै, अंतर साच योगी कहियै सोई। अवगतो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचै परम पद पाईऐ, साचै शब्द समाए लिया। एक कहो सच एका जाणै, हम मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाणै, अंतर कमल प्रगास थिया। जीवत मरै ता सबके सूजै, अंतर जाणै सर्वदया, नानक ता को मिलै वडाई, आप पछाणै सर्व जी।

अभ्याग तेह ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रहण आयर मह सब किश है, करमी पल्लै पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चलै तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म विनाश, रसना हर रसना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवे दसन दास, ता अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबे न छोड़े पास। ज्यों जल में कमल अलिपतो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै तिवहार गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत शास्त्र साजिया नो, पापुन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, एहो तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए, जो सहरत अपने तिन तन लोभ रत ना होए। पै पै तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, जो बै संतर तात सुध होए। त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाए, नानक तेजन सोहने जो रते हर रंग लाए। महला तीजा, आराम कली राम मन वसिया, ता बनिया सिंगार, गुर कै शब्द कमल बिकसिया, ता सौंपिया भगत भंडार। परम गया ता जागया, चूका अग्ञान आधार, तिसनो रूपया त्यगला, जिस हर नाल प्यार। सदा रवै पिर अपना, शोभावंती नार, मन मुख सिंगार न जाननी, जसन जन्म सबहार। बिन हर भगती सिंगार करै, नित जमै होए खुआर। संसार विच शोभ ना पाए नी, अगै जे करे सो जाने करतार। नानक सच्चा एक है, दो विच है संसार, चंगे मंदे आप लायन, सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई, दूजी नाही जाए, जे बहु तेरा लोची है, बिन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है, दूजे पाए खुवाए, तिन जमण मरण न चुकई, हमें विच दुख पाए। जिन्नी सतगुर स्यों चित लाया।

पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदै सब तावै आप नहीं चलिया चल है होर आवै जावै सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पावै निज कर वासा पाई है सच सिफत समावै सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक

अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जानी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माण है सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानकिया खैरे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पौसने आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही। कूड़ ने खुटे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवरया सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भगती रापै। सब मंतन हरिया होया हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परशुराम रोवे घर आया, अजय सो रोवे पीखिया खाए। ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवे राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया, रोवे दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए, रोवे पांडव पए मजूर। जिनके स्वामी रहत हदूर, रोवे जन्मे जा खोए गया। एकी कारण पापी भया, रोवे शेख मसा एक पीर। अंतकाल मत लागे पीड़, रोवे राजे कन पड़ाए। कर कर मांगे पीखिया जाए, रोवे किरपन संचय तन जाए। पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार। नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए। औरी कर्म ना लेखै लाए, महला दूजा। जप तप सब किश मन्ने है, अवर कारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल, करते लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे, गुण माहे समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किश

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपूरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साद जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायो।

कोई ऐसा सज्जन लोड़ लाहो जो मिले प्रीतम मोहे, गुरपुरे में लाया जत देखा तत सोए, जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए पौड़ी। देवन हार दातार कित मुख सालाही है, जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है, कोई न किसी वस सबना एक तार पाले बालकवान।

व्यापिया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगै आए खलोहा। सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा। नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा। अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा। आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा। पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई। जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई। जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई। जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई। श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा जपी।

पौड़ी वड़ियाई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उदारे एक घने दिन सरैन तेरा नाव सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे तरापी है रोग सोग दुख मन्ये जिस नाव मन वसै तसै प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मंड बेअंत उधार नहारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया श्लोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कुसुंबै भुली तो सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हों तुद बिन अड ना लहिंदी महला पंजवा सस विरायण नानक जीओ ससरा वादी जेठो पौ पौ लू है हब्बे पास पुणे दे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू उठा चित तिस दर्द निवारण जिस तू उठा चित तिस कदे ना हारण जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारण जिसनो लाए सच ते सच संभालण जिस आया हथ निदान सो रहया पालण जिसनो इको रंग भगत सो जानण ओ सबना की रेण बिरही चारण सब तेरे चोज विडाण सब तेरा कारण श्लोक महला पंजवा उस्तत निंदा नानक जी मैं हब मंजाई छोड़िया हब के जित्यागी हब्बे साख कूड़ावे डिठे तौ पल्ले तेंडे लागी महला पंजवा फिरदी फिरदी नानक जीओ हों फावी थी बौद्ध सावर पंदा ताहों सुख सुखाली सुती।

माधाना पर्वतकार नेत्र बासर माधाना पर्वतकार नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रतन निकालियोन कर आवा गौन चिलक्योन कुदरत है वे खालियान जिन एवड पिंड ठिनक्योन लहने तरयोन छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप पैसे ती मिक्योन सिखा पुत्रा कोख कै सब उम्मत वेखो जेक्योन जांस दोस्तां लहना टिक्योन फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब विनाहे मानसा ज्यो पानी बूर वरे अदर गै गुरु की कुदरती नूर जित सुहाथ ना लबई तू ओ ठरूर नौ निध नाम निधान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो मन्ये चूर नेड़े दिसे मात लोक तो सुजे दूर फेर वसाया फेर आन सतगुर खा डूर सो टिका सो बहना सोई दीवान पिउ दादे जिवेहा पोता प्रमाण जिन बासक नेत्रै कतिया कर नेही तान जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान

माय ना होती, बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कवन कहां ते आया। राम कोई न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। चांद ना होता, सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय, हर का नाम नित नित ली जय। रहाओ गंगा जौ गोदावर जाइय, कुंभ जौ केदार नाइय, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करै, तन जौ हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्मायल की जय, आप बराबर कंचन दी जय, राम नाम सरतउ न पूजै। मने न की जय रोस, जमे न दी जय दोष, निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जथ रथ राय नंद, राजा मेरा रामचंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपाओ पाओ न दर्श, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारस नाम परस। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे। रहाओ हम बाडो कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबे ना नासी। कहो रविदास समय सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसाए कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहा निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहा निरंजन रमैया होए। रहाओ देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे सबदया नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै, एस कला जो जाने पे ओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रहे सो कवो ना सोवे, तीन तलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र लै हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह न अलिया पख, पांचो इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत, मन तन अर्प कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुए हारे। असर नदी का बंदे मूल, पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जगंग नास्यो गोष्ट करै। चौ मुख दीवा जो द्वार, पलू अंत मूल विचकार, सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामे गुहै। मस्तक पद्म द्वाले मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी, पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर शंख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान,
बेणी जाचै तेरा नाम। राग नट नारायण।

मेरे मन जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख भव कीने, सब पर हर पास धरे रहाओ। हर हर नाम जप आराध्य सेवक पाए खरे, किल विख दोख गए सब निकर, ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावै, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर मैं, एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवै, हर के भगत हरे। तिनकी संगत देह प्रभ जाचौ, मैं मूड मुग्ध निस्तरे। कृपा कृपा धार जग जीवन, रख ले वो शरण परे। नानक जन तुमरी शरण आई, हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा राम जा

बिकसै मोर मुरले, हमरे स्वामी लोच हम लाई। हम जीवे देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाए। हर मेलो अंध भले, नट महला चौथा। मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम ते आयो। हम सतगुर चरण पखे रहाओ, उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो। हम पापी शरण रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो। हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए। गुर सतगुर संग सखे, जो चंदन संग बसे निम बिरखा। गुण चंदन के बसखे, हमरे अवगन बिखिया बिखै के। बहु बार बार निमखे, अवगन आरे पाथर पारे। हर तारे संग जनखे, जिनको तुम्हार राखो स्वामी। सब तिनके पाप क्रिखे, जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी। तुम दुष्ट तारे हरणखे, नट महला चौथा। मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर। हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के भूल चूक। हम अब आए प्रभ शरण अगे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी। हम राखो वड पाप अगे, तुमरी संगत हर को ना उधरे हो। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारे हो। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गावे स्वामी। हाँ बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम। तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानक कहो दया प्रभ धारो। हम सेवै तुम जन पगे, नट महला चौथा। मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी। मत गुरमत नाम बने रहाओ, हर जन हर जस हर हर गायो। उपदेश गुरु गुर सुने, किलबिख नाम किलबिख पाप नाम हर काटे। जब खेत किरसान लुने, तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो। हम कह ना सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही। गुण जानो प्रभ अपने, माया फास बंद बहु बंदे। हर जप्यो खुल खुलने, ज्यों जल कुंचर तंदुए बंदो। हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम खोजो जुग जुगने, तुमरी था पाई नहीं पावे। जन नानके प्रभ वडने, नट महला चौथा। मेरे मानो कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रभ धारी। लग सतगुर हर जपने रहाओ, हर तुम वड अगम गोचर स्वामी। सब त्यावै हर रुणने, जिनको तुमरे वड कटाख है। ते गुरमुख हर सिमरने, एहो पर पंच किया प्रभ स्वामी। सब जग जीवन जुगने, ज्यो सलल सलल उठे बौ लहरी। मिल सलल सलल समणे, जो प्रभ किया सो तुम ही जानो। हम न जाही हर गहने, हम बारक कौर दुस्त धारो। हम करे प्रभु सिमरणे, तुम जल निधार मान सरोवर। जो सेवै सब फलने, जन नानक हर हर हर हर बांछ। हर देवो कर कृपणे, नट नारायण महला चौथा। पड़ताल एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। सब दाल दाई दुख दाल, हर हो नदर निहाल रहाओ। हर का ग्रहो रे आप सवारो, हर रंग रंग महल बेअंत। लाल लाल हर लाल, हरे अपनी कृपा करी आप ग्रह आयो। हम हर की गुर की है बसीठी, हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल। हरे आवते की खबर गुर पाई, मन तन आनंदो आनंद पहे। हरे आवते सुने मेरे लाल हर लाल, जन नानक हर हर मिले पहे। गलतान हाल निहाल निहाल, नट महला चौथा।

मन में संत संगत शुभवंती, सुना कथ कथा सुखवंती, सब किलबिख पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती रहाओ। हर कीर्त कलयुग विच यूतम, मत गुरमत कथा भजंती, जिन जन सुनी मनी है जिन जन, तिस जन कै हौ कुरबानंती। हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया, तिस जन सा पूख लहंती। नानक जन हर कथा सुन त्रिपते, जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा, कोई यान सुनावै हर की हर गाल, तिस को हौ बल बल बाल, सो हर जन है पल पाल। हर हो मेल निहाल रहाओ। हर का मार्ग गुर संत बतायो, गुर चाल दिखाई हर चाल। अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो, नेह कपट कमावो हर की हर काल। निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए, जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल। जन नानक कहो मत हर प्रभ दीनी, हर देख निकट है दूर। निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नट नारायण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम हौ क्या जाना क्या पावै, मन प्यास बहुत दर्शावै रहाओ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जिस ऊपर रुच आवै कृपा करो। जिस पुरख विधाते, सो सदा सदा तू त्यावै। कवन योग कवन ज्ञान ध्याना, कवन गुनी रीजावै। सोई जन सोई निज भगता, जिस ऊपर रंग लावै। साई मत साई बुद्ध स्याणप, जित निमख ना प्रभ बिसरावै। संत संग लगे हो सुख पायो, हर गुण सद ही गावै। देखियो अचरज महामंगल रूप, किश्यान नहीं दिष्टावै। कहो नानक मोर्चा गुर लाहे, तैं गर्भ जोन कै आवै। नट नारायण।

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा कर।

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, अनक जतन कर रहे हर अंत नहीं पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ, काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर सरन हर प्रभ आया, शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मर निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उतारो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा जप मनो राम नाम सुखदाता, सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंत्र राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नामै, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम ध्याइए हर हर मन जपिए, हर जप माला जिनकै मस्तक लिखिया, हर मिलिया हर बनवाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहू, हर मात पिता प्रतपाला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किलबख हर जस जाला, मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल बिख काट, हर हर उर तारियो गुरपूर है, मेरा सीस की जय गुरवाट रहाओ। मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मेलो गुरपूर है, गुरबचन बिकानो हट हाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अधकाट, बिन हर नाम के बिन हर नाम को मुक्त ना पावे। बहु कंचन दीजे कटकाट, हर कीर्त गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर परम पौ पागा, लच लज पानी मटकी माट, कल युग गुरपूरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक लिखे ललाट। जन नानक रस अमृत पिया, सब लाथी भूख तिखाट, शक्का एक माली गौड़ा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरे मन टहलो हर सुख सार, अवर टहला झूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पवजल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लो मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम पूले सागता, बिन गुर अंध अंधार, तुर होव ना सो होया को न मेटन हार। अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा, राम नाम कौ नमस्कार, जास जपत होवते उधार रहाओ। जा कै सिमरन मिटै तंद, जा कै सिमरन छूटै बंद, जा कै सिमरन मूर्ख चतर, जा कै सिमरन कुलै उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुचित पाप, जा कै सिमरन नहीं संताप, जा कै सिमरन रिद विगास, जा कै सिमरन कवलादास, जा कै सिमरन निद निदान, जा कै सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, कोट भगत उधार करी, हर दास दासा दीन सरन, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा महला पंजवा, ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पज पूर्ण काम रहाओ। बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत, बूजत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुखे खीर। जैसे रण में सखा प्रात, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरखे बरस मेंग, जैसे पलन सरन सेंग, गरड़ मुख नहीं सर्प त्रास।

और कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊंच मुचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारा सफल काज अपने दास तो लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्स पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहलो प्राण मन तन संत बहलो संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरा चीत संत आग्या मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोह बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोह देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सो कियो विश्राम सगल निध हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जां कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जां कै दीबाण बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हम बलिहार जास मिल होवे उधार नाम संग मन तन है रात नानक को प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवा दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मोह स्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ एक खिन है था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत कीने पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊंच अगम मुरार कड़ लेहो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाओ आदि अंत मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक।

तौ देवा ना जानिए जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ देवा ना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर, मनुख फिरै से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा, जिस तू देहे

मीन की चपल से युक्त मन राखिए, उड़े न हंस न कंध छीजे। पंत नानक जनो रवे जे हर मनो, मन पवन से अमृत पीजे। मीन की चपल से युक्त मन राखिए, उड़े न हंस न कंध छीजे। मारू महला पहला माया मुई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत। बोइथ जल सिर तर टिके, साचा वखर जित। मानक मन मैं मन मारसी, सच ना लागे कत। राजा तख्त टिके गुणी, पै पंचायन रत। बाबा साचा साहिब दूर ना देख, सर्ब ज्योत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि शंकर, इंद तपै पेखारी। मन हुक्म सो है दर साचे, आकी मरया फारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरपुरे विचारी। बिन सेवा फल कवो ना पावस, सेवा करनी सारी। ने तनिया तन निगुरिया गुर, निमाणिया तू मान। अंदलै मानक गुर पकड़िया, नितानिया तू तान। होम जपा नहीं जानिया, गुरमती साच पछाण। ना बिना नाही दर टोई, झूठा आवन जान। साचा नाम सलाही है, साचे ते तृप्त होए। ज्ञान रतन मन मांझी है, बौण न मैला होए। जब लग साहेब मन वसै, तब लग बिगना होए। नानक सिर दे छुट्टी है, मन तन साचा सोए। मारू महला पहला जोगी जुगत नाम निर्मायल, ताके मैल ना राती। प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती। गुसाई तेरा कहा नाम कैसे जाती, जातो पीतर महल बुलावे। पूछो बात निरंती रहाओ ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इशनानी। हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण। त्रिपवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एहो कट शाबा। तोलो नाम या जाची, एको हाट साहो सबना सिर। वन जारे एक पाती, दो वै सिरे सतगुरु निबेड़े। सो बूझे जिस एक लिव लागी, जियो रह निपराती। शब्द वसाए परम चुकाए, सदा सेवक दिन राती। ऊपर गगन गगन पर गोरख, तां का अगम गुरु पुनवासी। गुरबचनी बाहर करे को, नानक पया उदासी। राग मारू महला पहला, कर पंजवा एको अंकार। सतगुर प्रसाद अहन सजागे, नींद ना सोवै। सो जाने जिस वेदन होवै, प्रेम के कान लगे तन पीतर। वैद के जाने कारी जियो, जिसनो साचा सिफती लाए। गुरमुख विरले किसे बुझाए, अमृत की सार सोई जाने। जे अमृत का वापारी जियो, रहाओ पिर सेती तन प्रेम रचाए। गुर के शब्द तथा चित लाए, सहज सेती तन खरी सुखेली। तृष्णा तिखा निवारी जियो, सहसा तोड़े परम चुकाए। सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारे। सुंदर जोगा तारी जियो, हाँ मैं जलिया मनो विसारे। जंपर वजह खड़ग करारे,

जप हर हर नाम छड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मन लै जावै जियो माया मोह बिखम है भारी क्यों तरिया दुत्तर संसारी सतगुर बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लंघावै जियो तू सरबत्र तेरा सब कोई जो तू करै सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावै बेचारा हर पावै हर थाए पावै जियो मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विख काटै हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलद्या नाल सिखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जापै जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निरपो निरंकार सतनाम जग में सृष्टि उत्तम काम दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो हर सेवक नेड़ न जाई जियो जिस उपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया

पचारो तरियो बदक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराध्यो गतपत पारो तारे कीनी रखिया भगत प्रहलाद हर नक्ष नख बिदारे बिदर दासी सुत भयो पुनीता सगले को लियो जारे कवन पराध।

मारू महला पंजवा वेतन वेत प्रमेय बहु भांति अनक जतन कर ताए जो जो कर्म किए हो मैं ते ते पै जाए अवर दिन काहू काज न लाए सो दिन मोको दीजै प्रभ जियो जा दिन हर जस गाए रहाओ पुत्र कलत्र गृह देख पसारा इसी मैं उर जाए माया मद चाख पय उदमाते हर हर कबो न गाए एह बिद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ मांगन कौ दान आए त्याग्यो सगला मान महत्ता दास रेण शरण आए कहो नानक हर मिल पय एक महा आनंद सुख पाए मारू महला पंजवा कवन थान तीरियो है नामा कवन बस्त अहंकारा कवन चिहन सुन ऊपर शोहयो मुखते सुन कर गारा सुनो रे तू कौन कहां ते आयो एती ना जानो केती क मुद्दत चलते खबर ना पायो रहाओ सहनशील पवन यार पानी बसदा खिमा ने प्राते पंच तत् मिल पयो संजोगा इनमें कवन दुराते जिन रच रचिया पुरख विधाता नाले हो मैं पाई जन मरण उस ही कौ है रे ओहा आवै जाई बरन चिहन नाही किछ रचना मिथ्या सगल पसारा पंत नानक जब खेल उजारै तब एक अंकारा मारू महला पंजवा मान मोहर लोभ विकारा बियो चीतना कालेओ नाम रतन गुणा हर वणजे वा लाद वखर लै चालेओ सेवक की ओड़क निभी प्रीत जीवत साहेब सेवयो अपना चलते राख्यो चीत रहाओ जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो तिस्ते मुख नहीं मोरयो सहजानंद रखियो गृह भीतर उठ वाहू कौ दौरयो आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा सो घर खनी जान्यो जो जो हुक्म पयो साहिब का सो माथे ले मान्यो पयो कृपाल ठाकुर सेवक सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल ओह आया जिन नानक खसम पछाता मारू महला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पई ठाकर कीर्तन हर हर गाई श्रमथा का पाए बिश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरण आई रहाओ काम क्रोध लोभ निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कत न पयो दुराई सुख शीतल सरदासा पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खन पीतर मैं मां कथन ना जाई निरपौ पय सगल पै खोए गोबिंद चरण उटाई नानक जस गावे ठाकर का रहन दिन सलिवलाई मारू महला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबो न गाव सिरे छोड़ जाए खन पीतर ता कौ ओआ कौ फिर ताव सिरे अपने प्रभ कहो क्यों ना समार सरे बैरी संग रंग रस रचिया तिस्यों जिया रा जार सरे रहाओ जा कै नाम सुनिया जम छोड़ै ताकी सर ना पाव सरे काड़ दे स्याल बपरे कहो ताकी ओट टिकाव सरे जिसका जास सुनत पवतरी है ता स्यो रंग ना लाव सरे थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव सरे पयो प्रसाद कृपा निद ठाकर संत संग पत पाई कहो नानक त्रै गुण प्रम छूटा जौ प्र पय सहाई मारू महला पंजवा अंतर जामी सब जान तिस्ते कहां दुलारे हो हस्त पाव चरेखन पीतर अग्न संग ले जा रहे हो मूड़े तै मंते राम बिसारे हो
लून खाए करै हराम खोरी पेखत नैन बेदारियो रहाओ। असाध रोग उपजो तन पीतर टरत ना काहू टारियो प्रभ विसरत महा दुख पायो एहो नानक तत विचारियो। मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावै नीता नीत तिसबिन दूजा अवर ना को वाद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ। जा कै वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गयो साचा सोए सुख पाया फिर दुख ना होए। मारू महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारो अज्ञानथ होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म आकारथ। हरे नर ऐसी करै अयानथ तज सारंग धर भ्रम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संगसानथ रहाओ। धरणी धर त्याग नीच कुल सेवै हाँ करत बिहावथ फोकट कर्म करै अज्ञानी मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया जो बिनसत सो निचर जानथ पर की कौ अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभु डहकावे मनुखाए बिसार हर जियो बिखै भोगै तबत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दप तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ। बेकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए महासागर समुद्र लंघना पार ना परना जाए। काम क्रोध

अंत की बार सगले शलिया निर्भउ निरंकार दयालिया जी जंत सगले प्रतपलिया रहाओ। एक है श्रम कर गाडी गढ़ है एक है सुपन है दाम ना छड़ है राज कमाए करी जिन थैली ता कह संग न चंचल चलिया। एक है प्राण पिंड ते प्यारी एक संची तज बाब महतारी सुत मीत प्रात ते गुहजी ता कह निकट ना होई खलिया। होए अदूत बैठे लाए तारी जोगी जति पंडित बिचारी ग्रे मड़ी मसानी बन मैं बसते ऊठ तिना कह लागी पलिया। काटे बंधन ठाकर जाके हर हर नाम बस्यो जीता कै साध संग पहे जन मुक्ते गत पाई नानक नदर निहलिया। मारू महला पंजवा सिमरो एक निरंजन सोउ जाते बिरथा जात ना को मात गर्व मैं जिन प्रत पारिया जियो पिंड दे साई सवारिया। सोई विधाता खिन खिन जपिए जिस सिमरत अवगुण सब ढकी है चरण कमल और अंतर तारो बिख्या बंते जियो उधारो। करण पलाह मिटै बिललाटा जप गोविंद भरम पौ फाटा साह संग विरला को पाए नानक ता कह बल बल जाए। राम नाम मंतन आधारा जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत कर मानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लो मदमाता कौडी बदलै जन्म गवाता अपना छोट पर आया राता माया मद मंतन संग जाता। त्रिशन ना बूझै करतक लोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगौरी आप बुलायो नानक कीर्तना जाए मिटायो पस पंखी पूत अर प्रेता बबे जोनी फिरत्या नेता जै जानो तै रह न पावे थान बिहून उठ उठ फिरतावे मन तन बासना बहुत विस्तारा। अहम मेव मूठो बेचारा अनक दोख अर बहुत सजाई ताकी कीमत कहन न जाई। प्रभ बिसरत नरक मैं पाया तै मात ना बंद ना मीत ना जाया जिसको होत कृपाल स्वामी सोजन नानक पार ग्रामी। प्रहमत प्रहमत प्रभ सरणी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द विदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण। अंधकूप ते कड नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा। साध रूप अपना तन तारिया महा अगन ते आप उबारिया जप तप संजम इस्ते किश नाही आदि अंत प्रभ अगमा गाही। नाम देहे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। मारू महला पंजवा कत कौ डहकावो लोगा मोहन दीन कृपाई ऐसी जान पाई। सरण सूरो गुरदाता राखै आप वडाई रहाओ भगता का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई। अपने कौ कृपा करियो एक नाम ते आई नानक दीन नाम मांगै दुतिया भरम चुकाई। मारू महला पंजवा मेरा ठाकर अत पारा मोहे सेवक बेचारा मोहन लाल मेरा प्रीत मन प्राणा मोको देहो दाना रहाओ। सगले मैं देखे जोई बीजो अवर ना कोई जियन प्रतपाल समाहे है हुसी आहे दया मोहे की जय देवा नानक लागो सेवा। मारू महला पंजवा पतत उदाहरण तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई पेटै संत जित हर हरे हर त्याईए। मोको कोय ना जानत कहियत दास तुम्हारा एहा ओटा धारा रहाओ। सर्ब धारण प्रतपारण एक बिनो दीना तुमरी बिद तुम ही जानो तुम जल हमीना। पूर्ण बिस्थिरन स्वामी आहे आयो पाछे सगलो पूमंडल खंडल प्रभ तुम ही अच्छे अटाला खयो देवा मोहन अलख अपारा दान पावो संतां संग नानक रेण दा सारा।
ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਸੰਤਾ ਗੁਰ ਜਾਨੇ ਜਨਮੰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਬੜਾਈ ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ਅਗਿਆ ਤੋਲਾ ਨਾਮੋ ਰਹਾਓ ਅਵਗਤ ਸਿਉ ਮਾਨਿਆ ਮਾਨੋ।

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्यागुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुरप्रसाद नानक बखाना हर भजन तत् ज्ञान मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुख है दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल दीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंध पो हर एक नानक कियो मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राखै बूद बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जिंतू किया प्रभ करण कर नेक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन।

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवा एको अंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथै अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है भक्त जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कहो सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राजसभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही भरोसे गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट मैं को अब होत सहाई जो संपत अपनी कर मानी छन मैं पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड पर्यो सिर ऊपर तब सो बतै जाग्यो कहां हो तो अब कै पछताए छूट तो नाहन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

सीत ताका जाए, आप पर का कछ ना जाने, सदा सह सुवाए, चरण सरन सनाथ मन, रंग राते लाल गोपाल गुंडित गाओ नानक पय प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चांदना चांदन अंगन प्रभ जीओ अंतर चांदना, आराधना आराधनिका हर हर नाम आराधना, त्यागना त्यागनिका काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगनिका हर जस गुरते मांगना, जागना जागनिका हर कीर्तन में जागना, लागना लागनिका गुरचरणी मन लागना, एह बिद तिसै प्राप्ते जाके मस्तक भागना, कहो नानक तिस सब किश निका जो प्रभ की सरनागना। मारू महला पंजवा आओ जी तू आओ हमारा, हर जस सरवन सुनावना रहाओ, तुदे आवत मेरा मंतन हरियाओ, हर जस तुम संगावना, संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासै दुरमत दुखत जावना, दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ ना पावना, नौ निध रिद सिद्ध पाई जो तुमरै मन भावना, संत बिना मैं था ना कोई अवर न सूझै जावना, मोहे निर्गुण कहो कोई ना राखै संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तिवना, पहनना रख पत परमेश्वर फिरना गे नहीं थीवना, भोगना मन मध्य हर रस संत संगत मैं लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर भगती संग सीवना, मात्या हर रस मैं राते तिस बहुड़ ना कबहू औखीवना, मिलियो ते सर्वनिधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोए पीवना। मारू महला पंजवा कर अठवा अंजलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसै

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहली है जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त ना होई है मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्याप्या चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाने घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बुझै ओ बालक वांगी पाली है छोड़ बह तो छूटै नाही जो सिंचै तो पौ मनमाही इस ही मह जिसकी पत राखै तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल मानै बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लावै तित तित लगना कर कर वेखै अपने जचना नानके पूर्ण सुखदाते तू देहता नाम संभाली है मारू।

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है नासा कै साचे सुन लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मछकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिन सो आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किसी ही कस बख्शे आपे दे लै पाई है, आपे तन खो आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पानी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे

जो दिसै सब आवन जानी, सही सह सचे व्यापारी, सतगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सतगुर पूरा, सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू, ना तिस दिल ना तुम आई है, काल बिकाल पहे देवाने, शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना, जो दिसै तुझ महे समाना, नानक नीच

ऐसा जय गुण प्रगासन जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख कोई न मिटे साचे लिख है। आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चल है पार कर जो है कर नहीं पल है। काया नगर टह टह टेरी बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझै त्रिपवन सूझै मनसा मार मन स्यों लूझै। जो तुद सेवै से तुद ही जेहे निरपव बाल सिखाई है। आपे सुरग मच पयाला आपे जो सुरूपी बाला जटा बिकट बिकराल सुरूपी रूप ना रेख्या काई है। वेदक तेबी भेद ना जाता ना तिस मात पिता सुत प्राता। सगले सैल्यो पाए समाए अलखना लखना जाई है। कर कर था की मीत कनेरे कोई ना काटे अब गुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर पाए मिले पौ जाई है। भूले चूके मार्ग पावे या भुलाए तू है समझावे।

द्वारा गंगा सागर बेणी संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रव आपे, परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अभुल ना कबहू भुला, आपे मेहर दया पदाता, ना किसै को बैराई है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई, सब सह दाता तिल ना तुमाई, भरपुर धार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगमया पार, साचे सृजन हार मुरार, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिलै मेलाई है। ब्रह्मा विश्रमहेश द्वार, उबे सेवै लख्या पार, होर केती दर दिसै बिल लांदी, मैं गणत ना आवै काई है। साची कीर्त साची बाणी, होर ना दिसै बेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावां, मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है पी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कह बेनंती, दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला, दूजी दुरमत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, घर वार सहज ना जाना शोहर, बिन पर नींद ना पाई है। अंतर अग्न जलै पड़क हारे, मनमुख तके कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है, साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अहंकार निवारे, तस्कर पंचो शब्द संघारे, ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै, मनसा मनै समाई है। मां की रकत पिता बिंद तारा, मूर्त सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, या तुम राम सखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना परथाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिलै वडाई है। आपो पाया जगत सबाया, जिन सिर आ तिन तंदे लाया, सच्चे ऊपर अवरना दिसै, साचे कीमत पाई है। एथे गोयलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा तंदूकारे, बाजी खेल गए बाजी गार, जो निस सुपने पखलाई है। तिन कौ तख्त मिली वड्याई, निरपो मन वस्या लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी, त्रिपवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिलै सुख पावा, साचे साचा तख्त वडाई, हों मैं गणत गवाई है। गणत गणीय सहसा जीय, क्यों सुख पावै दूवै तीय, निर्मल एक निरंजन दाता, गुरपुरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहा मन राता, तिसकी ओट कही सुख पाया, मंत्र मैल न काई है। जीव रसायन साचै राती, हर प्रभ संगी पौ न प्राती, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख देहे तू है मन पावै, तुझ ही स्यो बनियाई है। अंत काल को बेली नाही, गुरमुख जाता तू सालाही, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। मारू महला पहला, आज उगादी अपर अपार है, आद निरंजन खसम हमार है, साचे जो जुगत विचारी, साचे ताड़ी लाई है। केतड़िया जुगत तंदूकार है, ताड़ी लाई सृजनहार है, सच नाम सची वड्याई, साचे तख्त वडाई है। सत युग सत संतोख शरीरा, सत सत वरतै गहर गंभीरा, सच्चा साहिब सच परख है, साचा हुक्म चलाई है। सत संतोखी सतगुर पूरा, गुर का शब्द मने सो सूरा, साची दरगह साच निवासा, मन है हुक्म रजाई है।
ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਮਨਮੁਖ ਸਾਚ ਪਰਮ ਪਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ, ਤੀਨ ਚਰਨ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਸੁੱਕੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੈ, ਮਨਮੁਖ ਬਚੈ ਅਵਾਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਦਰਗੈ ਸੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਰੀਜੈ। ਬਾਂਦੇ ਆਵੈ ਬਾਂਦੇ ਜਾਵੈ, ਸੋਜੀ ਬੂਝਣਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅੱਧੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ। ਦੋਏ ਪੱਗ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਿਥਾਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੈ ਪਰਥਾਏ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਅਹਿਨਿਸ ਭਗਤ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਜਿਉ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਵੈ ਚਲਾਵੈ। ਹੱਠ ਨਿਗਰੈ ਅਪਤੀਜ ਨਾ ਭੀਜੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਨ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਿਰੰਦਾ, ਨਾ ਜਮ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਸੇਵੇ ਸੋ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੈ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟਾ ਸੰਖ ਉਧਾਰੇ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਮੈਲ ਨਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਜਾਚੈ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਰਜਾਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਚੇ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋ ਧਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਬਦ ਪਤੀਜੈ ਅਲਾਖਿਆ ਭੇਵਾ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਬਖਸ਼ ਲਏ ਵਡਿਆਈ ਹੈ।

मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के ते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही। गुर की सेवा मुक्त परायण, अंधन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौ तावो, जो इच्छो सोई फल पावो। साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिभवन सेवक वडो वडेरे। सब तेरी कुदरत तू सिर सर दाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, ओए दरगै पैंदे सतगुरु छड़ाए। हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत न काई। हाँ मैं मार

जो जन्मै ते सर परमरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग विजोग मेरा प्रभ की ए सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पै निराले गुरमुख सीर सनाहा हे। नीके साचे केवा पारी ससौ दल गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पलै सब सच्चै ओ महा हे। काची समी तोटा आवै गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत चूका जमका फाहा हे। सबको बोलै अपन भाणै मनमुख दूजे बोल न जाणै। अंदले कीमत अंदली बोली आए गया दुखता है। दुख में जन्म

पाए त्रिभवन साज मेखली माया आपो पायख पाएगा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत पुज चलत की आसर करता है बिस्मा सब देखाएगा सुनो रात दिन सदुए किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमरा तीता गुरमुख नहीं कर पाएंदा साम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ता की कीमत कह ना सके को त्यों बोले ज्यो बोलाएंदा सुनो सबत पता लियो पाए सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया अपरंपर सब तेरो किया कमाएंदा राजतम सतकल तेरी छाया जन्म मरण हमें दुख पाया जिसनों कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराएंदा सुनो उपजे दस अवतारा सृष्टि उपाय की आपा सारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएंदा गुरमुख समझे रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगै जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पथ पाएंदा पंच तत् सुनो प्रगासा देहा संजोगी कर्मा अभ्यासा बुरा भला दो मस्तक लिखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रते हर रसमत वाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाई है पूरे पाग मिलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा कोई बुझो ज्ञानी करो नवेरा आसा मनसा हो मैं सहसा नर लोभी कूड़ कमाएंदा सतगुर ते पाए विचार।

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित सरीरा। बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है। पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वडियाई। सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी। साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख को जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए। नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल हे तीजा। आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना। आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा। आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद पावे सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है। आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तोले तोलो, जी जंत सब सरण तुम्हारी, कर कृपा आप पिछाता है। जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जम्मे चूके फेरी। साचे गुण गावे दिन राती, जुजगु एको जाता है। माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया। जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुन वरते संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा। गुरमुख होवे सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है। कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा। पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे। मनमुख परम पुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है। हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है। जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए। गुण अवगुण का एको दाता, गुरमुख विरली जाता है। मेरा प्रभ निर्मल अत्या पारा, आपे मिले गुर शब्द विचारा। आपे बख्शे सच दृढ़ाए, मन तन साचै राता है। मन तन मैला वे जोत्या पारा, गुरमुख बूझे कर विचारा। हम मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुखदाता है। गढ़ काया अंदर बहट बाजारा, तिस विच नाम है अत्या पारा। गुर कै शब्द सदा दरसो है, हम मैं मार पछाता है। रतने अमोल के अगम्या पारा, कीमत कवन करे बेचारा। गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है। सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा। मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझै, गुरमुख विरलै जाता है। आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए। नानक नाम मिलै वडियाई, जुग जुग एको जाता है। मारू महला तीजा, सो सच सेवो सृजनहारा। सबदे दुख निवारण हारा, अगमा गोचर कीमत नहीं पाई। आपे अगमा था हाहे, आपे सच्चा सच वरताए। एक जन साचा आपे लाए, साचो सेवै साच कमावै।

मनमुख पूला ठौर ना पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए। बिख्या राते बिख्या खोजै, मर जन्मे दुख ताहा है। आपे आप सा लाहे, तेरे गुण प्रभ तुझी माहे। तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे लखा थाहा है। बिन गुरदाते कोई ना पाए, लख कोटी जे कर्म कमाए। गुर कृपा ते कट अंतर वसिया, सबदे सच सलाहा है। सेजन मिले तुरे आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए। नानक जन गुण गावे नित साचे, गुण गावे गुणी समाहा है। मारू महला तीजा, निश्चल एक सदा सच सोई। पूरे गुरते सोजी होई, हर रस पीने सदा ते आयन। गुरमत सील सन्नाहा है, अंदर रंग सदा सचियारा। गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौनिद नाम वसिया कट अंतर। छोड़िया माया का लाहा है, रैयत राजे दुरमत दोई। बिन सतगुर सेवे एक ना होई, एक ते आयन सदा सुख पायन। निश्चल राजत नहा है, आवन जाना रखे ना कोई। जमन मरण तिसे ते होई, गुरमुख साचा सदा ते आवो। गत मुक्त तिसे ते पाहा है, सच संयम सतगुरु द्वार है। हम मैं क्रोध शब्द निवार है, सतगुर सेव सदा सुख पाई। सीर संतोख सब ताहा है, हम मैं मोह उपजै संसारा। सब जग बिनसै नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई। नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर शब्द सुहाया। पंच शब्द मिलवा जावाया, सदा कार्य सच नाम सुहेला। बिन शब्द कार्य केहा है, खिन में हसै खिन में रोवै। दूजी दुर्मत कार्य ना होवै, संजोग विजोग करतै लिख पाए। कीर्तना चलै चलाहा है, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए। हर स्यों सदी रह समाए, गुर कृपा ते मिलै वडियाई। हम मैं रोग ना ताहा है, रस कस खाए पिंड वधाए। पेख करै गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी। बिष्टा माहे समाहा है, वेद पढ़ै पढ़वाद बखाणै। घट मैं ब्रह्म ते शब्द ना पछाणै। गुरमुख होवै सो तत् बिलोवै, रसना हर रस्ता है। घर वथ छोड़ै बाहर तावै, मन मुख अंधे साधना पावै। अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल ना ताहा है। मनमुख देही परम पतारो, दुर्मत मरै नित होए खुवारो। काम क्रोध मन दूजै लाया, सुपने सुख ना ताहा है। कंचन देही शब्द पतारो, अंदन भोग भोगे हर स्यों प्यारो। महला अंदर गैर महल पाए, पाणा बुझ समाहा है। आपे देवै देवन हारा, तिस आगे नहीं किसै का चारा। आपे बक्से शब्द मिलाए, तिसदा शब्द अथाहा है। जियो पिंड सब है तिस केरा, सच्चा साहिब ठाकुर मेरा। नानक गुरबाणी हर पाया, हर जप जाप समाहा है। मारू महला तीजा, गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार, गुरमुख कार करे प्रभ पावै। गुरमुख पूरा पाएंदा, गुरमुख मनुआ उल्ट परावै। गुरमुख बाणी नाद बजावै, गुरमुख सच रते बैरागी। निज कर वासा पाएंदा, गुर की साखी अमृत पाखी। सच्चै सबदे सच सुपाखी, सदा सच रंग राता मन मेरा। सच्चे सच समाएंदा, गुरमुख मन निर्मल सत सरण आवै। मैल न लागै सच समावै, सचो सच कमावै सदही। सच्ची भगत दृढ़ाएंदा, गुरमुख सच बैणी। गुरमुख सच नैणी, गुरमुख सच कमावै करणी। सदही सच कह दिन राती, अवरा सच कहाएंदा। गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी, गुरमुख सचो सच वखाणी। गुरमुख सद सेवै सचो सच्चा,
ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਹਮੈ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਗਵਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉਤਮੀ ਉੱਚੀ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਪਾਏ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸਮਾਏਂਦਾ।

गुरमुख होवै सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो समकर जाणै सो मेरे प्रभ पाएंदा। गुरमुख मरै सो है परवान, आवन जाना शब्द पछाण। मरै न जमै ना दुख पाए, मन ही मनै समाएंदा। सेवट भागी जिन्नी सतगुर पाया, हमें विचो मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल न लागै, दर सच्चै सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेखै थापो थापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावै, सच सुन लेखै पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावै, गुरमुख निर्मल मैल न लावै। नानक नाम रते विचारी, नामे नाम समाएंदा। मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुक्म सब साजी। आपे थापो थाप निवाजी, आपे न्याओ करे सब साचा। साचे साच मिलाएंदा। काया कोट है आकारा, माया मोह पसरिया पासारा। बिन शब्द पसमै की ढेरी, खेहू खेहर लाएंदा। काया कंचन कोट अपारा, जिस विच रविया शब्द अपारा। गुरमुख गावै सदा गुण साचे, मिल प्रीतम सुख पाएंदा। काया हर मंदर हर आप सवारे, तिस विच हर जियो वसै मोरारे। गुर कै शब्द वणजन वापारी, नदरी आप मिलाएंदा। सो सूचा जे क्रोध निवारे, शब्दे बूझै आप सवारे। आपे करे कराए करता, आपे मन वसाएंदा। निर्मल भगत है निराली, मन तन धोवै शब्द विचारी। अंदन सदा रह रंगराता, कर कृपा भगत कराएंदा। इस मन मंदिर मैं मनुआ तावै, सुख पल्लर त्याग महा दुख पावै। बिन सतगुर भेटे ठौर ना पावै, आपे खेल कराएंदा। आप अपरंपर आप विचारी, आपे मेले करनी सारी। क्या को कार करे विचारा, आपे बख्श मिलाएंदा। आपे सतगुर मेले पूरा, सच्चा शब्द महाबल सूरा। आपे मेले देवड़े आई, सच्चे सोच तलाएंदा। कर ही अंदर साचा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई। नाम निधान वसिया कट अंतर, रसना नाम ते आएंदा। दिसंतर पवै अंतर नहीं पाले, माया मोहे बद्दा जमकाले। जमकी फासी कबहू ना टूटै, दूजै पाए परमाएंदा। जप तप संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कुमाही। गुर कै शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाएंदा। काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावै सब दुख का पसारा। सतगुर सेवै से सुख पावै, सच्चा शब्द मिलाएंदा। पौन पानी है बैसंतर, माया मोह वरत है सब अंतर। जिन कीते जत सह पछाण, माया मोह चुकाएंदा। एक माया मोहे गर्भ व्यापे, हमें होए रहे है आपे। जमका लै की खबर ना पाई, अंत गया पछताएंदा। जिन उपाय सोबित जाने, गुरमुख देवै शब्द पछाण। नानक दास कह बेनंती, सच नाम चित लाएंदा। मारू महला तीजा, आद जुगाद दया पद दाता। पूरे गुर कै शब्द पछाता, तुदनो सेवै से तुझै समावै। तू आपे मेल मिलाएंदा। अगमा गोचर कीमत नहीं पाई, जी जंत तेरी सरनाई। ज्यो तुद पावै तवै चलावै, तू आपे मार्ग पाएंदा। हैपी साचा होसी सोई, आपे साजे अवर ना कोई। सबना सार करे सुखदाता, आपे रिजक पहुंचाएंदा। अगमया गोचर अलाख्या पारा, कोई ना जाने तेरा परवारा। अपना आप पछाणे आपे, गुरमती आप बुझाएंदा। पाताल पुरिया लो आकारा, तिस विच वरतै हुक्म करारा। हुक्मे साजे हुक्मे

ज्यो तिल कहानी पीड़ाएं दा पूरे भाग गुरसेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल तस्नेड़ न आवे महल सच्चे सुख पाएं दा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे भाग गुरसेवा लाए तेरे हथ है सब वड़ियाई जिस देवै सो पाएं दा अंदर प्रगास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान रतन सदा कर चानन अज्ञान देर गवाएं दा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डूमुए अभागे चलदियां घरदार नजर ना आवे जमदर बांधा दुख पाएं दा बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई ज्ञानी त्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिलै वड्याई दर सच्चे सोभा पाएं दा सतगुर नो सेवे तिस्या मिलाए ममता काट सच लिवलाए सदा सच वण जैवा पारी नामो लाहा पाएं दा आपे करे कराए करता शब्द मरै सोई जन मुक्ता नानक नाम वसै मन अंतर नामो नाम ते आएं दा मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया पाने विच को विरला आया पाणा मन्ने सो सुख पाए पाने विच सुख पाएंदा गुरमुख तेरा पाणा पावे सहजे ही सुख सच समावे।

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब मैं वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय इंद्र मैं बाधी, सो प्रभ राखै पाई है। जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन मैं थापो थापनहारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व मैं जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंद पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंत्र में रव्या, जन्म मरण की जो न पव्या, दुख विनाश की या सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथाहो अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जंत सहत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुनो, साची कार कमाई है। मन पर तीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईस, तिस बिन दूजा अवर ना दिस, एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सिमर सिमर जीवै जन तेरे, एक अंकार समाई है। भक्त जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुनी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पै एकत्रा, करते भोग बिलासा है। जो पिर करै सो तन तत् मानै, पिर तनै सिंगार रखै संगानै, मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रयो दे तनै दिलासा है। धन मांगै प्रयो बोबे तावै, जो पावै सो आन दिखावै, एक वस्त को पहुँच ना साकै, तन रहती भूख प्यासा है। तन करै बिनो दो कर जोरै, प्रे परदेश ना जाहो वसो कर मोरै, ऐसा बणज करो गृह पीतर, जित उतरै भूख प्यासा है।
सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पही कृपा नानक सतसंगे, तौ धन पिर आनंद उलासा है, तन अंधी पिर चपरसियाना, पंच तत् का रचन रचाना, जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है, तन कह तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित ही ना लेख, वचन देहे छोड़ ना जासा है, फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओह पारो ठाकरो जिस कान ना शंदा, जिचर रख है तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊट सिदासा है, जाओ प्रे बचन कह तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहोर बहोर पिर ही संग मांगे, ओ बात जाने करहा साहे, आई आ गया पिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, पूर सिधायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है, हरे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रास देरे, बिन सतगुर पचबुए साकत, निगुरे गल जमफासा है, मनमुख आवै मनमुख जावै, मनमुख फिर चोटा खावै, जितने नरक से मनमुख भोगै, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, तिस कौन मिटावै जे प्रभ पैराया, सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा है, हाँ बलिहारी सदगुर पूरे, शरण के दाते बचन के सूरे, ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विछड़ ना कत ही जासा है, गुण निधान किशकीम ना पाई, घट घट पूर रहे हो सब ठाई, नानक शरण दीन दुख भंजन, हौरेण तेरे जो दासा है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करै आनंद आनंदी मेरा, घट घट पूर्ण सिर सिरै नबेरा, सिर साहा कै सच्चा साहेब, अवर नाही को दूजा है, हरखवंत अनंत दयाला, प्रगट रहे ओ प्रभ सरब्यो जाला, रूप करे कर वेखै विकसै, आपे ही आप पूजा है, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खिलावै दिन राती, आपे सुन सुन पीजा है, साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही, आपे सच तारियो सब साचा, सच्चे सच वर्ती जाहे, सचत पावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रभ तेरा, सच्ची कुदरत सच्ची बाणी, सच साहेब सुख की जाहे, एको आप तू है वड़ राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा, अंतर बाहर सबके जाने, आपे ही आप तीजा है, तू वड़ रसिया तू वड़ भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरा, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझा ते होवै, देह दान सब सह जंत लोवै, टोटना आवै पूर भंडार, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचै सिद्ध साधक बनवासी, जाचै जति सती सुखवासी, एकदा तार सगल है जाचक, देह दान सृष्टि जाहे, करै भगत हर रंग अपारा, खिनमै थापो थापन हारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्स सोई तुद जाणै, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माणै, चतर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जाहे, जिस चीत आवै सो वे प्रवाह, जिस चीत आवै सो साचा सहा,
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਵੈ ਤਿਸ ਪਹੁ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਕਹਾ ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਹੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ ਤੂਟਾ ਗੰਡਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ, ਅਮਿਓ ਚੋਲ ਚੋਲ ਪੀ ਜਾਹੇ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਥੀਵੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ, ਗੁਰ ਦੂਰ ਕੀ ਅਪਰਮੀ ਜਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ, ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਹੇ। ਬਾਰਹਾ ਕੰਚਨ ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਵਨੀਸ਼ ਚੜਾਇਆ। ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈ ਜਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨ ਭੀ ਜਾਹੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਲਹੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾ ਫਾਸੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਟੇ ਅਪਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਜੀ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਬਿਗਨਾ ਭਗਤੀ, ਹਰ ਪੂਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ, ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਗੋਸਾਈ। ਊਚ ਊਨ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨਾ, ਮਨ ਲਾਗਾ ਸਹਿ ਧਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਪੂਰੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਪਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਇ ਸਮਾਣੀ, ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੈ ਆਪ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਪੀ ਤੇਈ ਸਭ ਨਿਸਤਰੇ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਨੇਚਰ ਥਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਜਾਚੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਮੈ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਏਂਦਾ। ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੁੱਲੈ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਸੋ ਕਾ ਨਗਰਿਹੋ ਕੀਆ, ਸੇ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀਆ। ਤ੍ਰਿਹੋ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਅਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਕੀਜੈ ਸੋ ਬੰਧਨ ਪੈਰੇ। ਕਰੁਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜਨ ਜੰਮੈ, ਸਭ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਗਵਾਏਂਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪਰਦਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਵਾ, ਸਭ ਕਾਲੈ ਵਸੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਨਿਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਨਾਸੀ, ਸੋ ਨਿਚਲ ਜੋ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਫਿਰ ਸਰਲੈ ਸਰਲ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੁਆਰੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਜਿਤ ਮੰਤਰ ਪਤਾਸੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਠਹਿਰਾਏਂਦਾ।
रूड़ो ठाकर कित वस न आवै, हर सो किश करे जे हर क्या संता पावै, कीता लोड़न सोई करायन दर फेर ना कोई पाएंदा, जिथे औकट आए बंत है प्राणी तिथे हर त्याई है सारंग पानी, जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई तिथे हर आप छड़ाएंदा, वड्डा साहेब अगमा था क्यों मिलिया प्रवे प्रवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए सो विच संगत वासा पाएंदा, हुक्म बूझै सो सेवक कही है बुरा भला दो संसार सही है, हौ मैं जाए ता एको बूझै सो गुरमुख सहि समाएंदा, हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुभाए अति तो दासी, अनकर अंग करै बो भाती जो पिता पूत लाडाएंदा, अगमा गोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिया जा ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पाया तिन जन कहो जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा, तू आपे करता कारण करना सृष्टि उपाय धरी सब धरना, जन नानक शरण पया हर द्वारा हर भावै लाज रखाएंदा, मारू सोल हे महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद, जो दिसै सो एको तू है बाणी तेरी सरवणी सुनिय, दूजी अवर ना जाप सकाई सगल तुम्हारी धारणा, आप चितारे अपना किया आपे आपे आप प्रभथिया, आप उपाय रचियोन पासारा आपे कटकट सारणा, एक उपाय वड़दरबारी एक उदासी एक करबारी, एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारणा, आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संग राचा, आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप सारना, सदा सदा सद हो बनहारा ऊंचा अगमा था अपारा, ऊने परे परे पर ऊने एह चलत स्वामी के कारणा, मुखसा लाही सच्चे साहा नैनी पेखा अगमा था, करनी सुन सुन मंतन हरिया मेरे साहेब सगले उदाहरणा, कर कर वेखै कीता अपना जी जंत सोई है जपना, अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना, संत सभा जै बैसै प्रभ पासे आनंद मंगल हर चलत तमासे, गुण गावै अनहद तुन बाणी तै नानक दास चितारना, आवन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देखै खेलिया पारा, आप यो पाए यो पावन हारा अपना किया पालना, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी, दोए कर जोड़ सिमरव दिन राती मेरे स्वामी अगमे अपारना, तुद बिन दूजे के साला ही एको एक जपी मन माही, हुक्म बूझ जन पै निहाला ए भगता की कहलना, गुर उपदेश जपिए मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा, गुर उपदेश टुटै सब बंधन एहो परम हो पर जालना, जय राखै सोई सुखथाना सहजे होए सोई पहलमाना, बिन से बैर नाही को बैरी सब एको है पहलना, डर चूके बिन से अंधियारे प्रगट पए प्रभ पुरख निरारे, आप छोड़ पए सरनाई जिसका साथ इस कहलना, ऐसा को बड़ भागी आया आठ पहर जिन खसम ते आया, ते जन कै संग तरै सब कोई सो परवार सदारना, ए बख्शीस खसम ते पावा आठ पहर कर जोड़ते आवा, नाम जपी नाम सही समावा नाम नानक मिले उचारना, मारू महला पंजवा सूरत देखना पूल गवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा, जग में कोई रहन ना पाए निचल एक नारायणा, गुरपुरे की पौ सरनाई मोह सोग सब पर मिटाई, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम हृदय गायना,
ਜਿਸ ਨਾਮੈ ਕਉ ਤਰਸੈ ਬਉ ਦੇਵਾ, ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ, ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਸੋ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਣਾ, ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਧਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛੂ ਨਾ ਬੂਜੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹੋ ਭੰਡਾਰ ਨਾਮ ਜਿਸ, ਇਹੋ ਰਤਨ ਤਿਸੈ ਤੇ ਪਾਇਣਾ, ਜਾ ਕੀ ਤੂਰ ਕਰੇ ਪੋਨੀਤਾ, ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਨਾ ਭਾਵੈ ਮੀਤਾ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਭੇਟ ਪਾਰ ਪਰਾਇਣਾ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਲੋੜੈ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਕਾਮ ਤਿੰਨ ਸੋਹੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਸੇਵਾ ਗੁਰਪੂਰੇ, ਨਾਮ ਕਮਾਏ ਰਸਾਇਣਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਪੰਚ ਧਾਤੂ, ਭੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੈ ਨਿਰਮਲਾ ਤੂੰ, ਪਾਰਸ ਜਾ ਪੇਟੈ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਦਿਖਾਇਣਾ, ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਹੀ ਲਵੈ ਲਾਗੇ, ਮੁਕਤ ਬੱਪੜੀ ਪੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ, ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਣਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗੋਚਰ ਸੋਈ, ਜਿਸਨੋ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਸੇਵਕ, ਜਿਸ ਵਟ ਭਾਗ ਮਥਾਇਣਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਣੈ, ਤੁਸ਼ ਮਾਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵਖਾਣੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਇਣਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਜੀਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਥੀਵੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਜਮਕੈ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਇਣਾ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਪੜਿਆ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨਿਆ ਗੈ ਧਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਾਈ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਿਰਮਾਇਣਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਸੰਗ ਲਿਹੋ ਰਲਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਟੈ ਲੈ ਲਾਏ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੋ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੈ, ਚਰਨ ਤੋਏ ਸੁਖ ਪਾਇਣਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਆਰੇ ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਇਆ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਮ ਸਰਨਾਇਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਰੱਖੋ, ਇਹੋ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਵਾਇਣਾ, ਪਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸੁਖ ਸਹਿਜੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਸਾਇਣਾ, ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਿਮਰੈ ਧਰਤੀ ਅਰ ਆਕਾਸਾ, ਸਿਮਰੈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗੁਣਤਾਸਾ, ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਸਿਮਰੈ, ਸਿਮਰੈ ਸਗਲਿਓ ਪਾਰ ਜਨਾ, ਸਿਮਰੈ ਖੰਡ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਵਾ, ਸਿਮਰੈ ਸਿਮਰੈ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀਆ ਸੱਚ ਸੋਵਾ, ਸਿਮਰੈ ਖਾਣੀ ਸਿਮਰੈ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰੈ ਸਗਲੇ ਹਰ ਜਨਾ, ਸਿਮਰੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸਾ, ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਤੇ ਕੋਟ ਤੇ ਤੀਸਾ, ਸਿਮਰੈ ਜਖ ਦੈਤ ਸਭ ਸਿਮਰੈ, ਅਗੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਜਸਗਨਾ, ਸਿਮਰੈ ਪਸ ਪੰਖੀ ਸਭ ਭੂਤਾ, ਸਿਮਰੈ ਬਨ ਪਰਬਤ ਅਵਧੂਤਾ, ਲਤਾ ਬਲੀ ਸਾਖ ਸਭ ਸਿਮਰੈ, ਰਵ ਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਮਨਾ, ਸਿਮਰੈ ਥੂਲ ਸੂਖਮ ਸਭ ਜਨਤਾ, ਸਿਮਰੈ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਹਰ ਮੰਤਾ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਮਰੈ ਪ੍ਰਮੇਰੇ, ਸਗਲ ਪਵਨ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਧਨਾ, ਸਿਮਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ ਅਸਰਮਾ, ਸਿਮਰੈ ਜਾਤ ਜੋਤ ਸਵਰਨਾ, ਸਿਮਰੈ ਗੁਣੀ ਚਤਰ ਸਭੇਤੇ, ਸਿਮਰੈ ਰਹਿਣੀ ਅਰਦਨਾ, ਸਿਮਰੈ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਨਿਮਖਾ, ਸਿਮਰੈ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸੋ ਸੋਚਾ, ਸਿਮਰੈ ਸਾਉਣ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਜੋਗਾ, ਅਲਖ ਨ ਲਖੀਐ ਇਕ ਖਿਨਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਵਾਮੀ, ਸਗਲ ਕਟਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਲਾਵੋ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸੋਜਨਾ, ਜਾਂ ਕੈ ਮਨਮੂਠਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨਾ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪਨਾ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਬਹੁ ਨ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਰੋਨਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਜਾਂ ਕੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿ ਤੁਨਾ, ਸੋ ਤਨਵੰਤਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ, ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਉਠਾ, ਸੋ ਪੂਰ ਕਰਮਾ ਨਾਸ਼ਨਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੁਆਮੀ ਸੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਹੀਐ ਦੂਜਾ ਕੋਈ,
गुर ज्ञान अंजन काट्यो भ्रम सगला अवरना दिसै एक बिना ऊचे ते ऊचा दरबारा कह न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथा स्वामी अतुल न जाई क्या मिना तू करता तेरा सब किया तुझ बने अवरना कोई बिया।

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मैं नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास ग्रह संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग भज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन मैं चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणे कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यों प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारे कछुऐ नाही, जिस जणाए तिसै जणावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलैही कीने, ताकि कीमत कहण ना जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदै कटे ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंध कूपते सही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहण ना जाई, अचर जरूब वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक

जग मैं राम नाम हर निर्मला, होर मैला सब आकार, नानक नाम ना चेतनी, होए मैले मरै गवार, महला तीजा। दुख लगा बिन सेवे है, हुक्म मने दुख जाए, आपे दाता सुखै दाय, आपे देस जाए। नानक एवै जानी है, सब कित सैर जाए, पौड़ी हर नाम बिना जगत है।

ना पाई जे बहुत लोचाही आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किस आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग में संती तन खटिया जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाए इत तन पाया भुख लथी सुख वसिया मन आए जिन्ना कहो तुर लिखिया तिन्नी पाया आए मन मुख जग तो निरतन है माया नू बिल लाए अंदन फिरदा सदा रह भुख न कदे जाए सांत ना कदे आवई न सुख वसे मन आए सदा चिंत चितवदा रह सहसा कदे ना जाए नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए सदा सदा सुख में रह सच्चे महे समाए महला तीजा जिने उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरो पाए रहो जिस बिन अवर ना कोए खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पहनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द सिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखाले सोए पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जप हर हर नाम ते आई है हमें अज्ञान गवापै अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै जिन चाखिया से निरपौ पय से हर अस्त्रापै हर कृपा धार पी आया फिर काल ना व्यापै। श्लोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना विहाजै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुरप्रसादी गुण पाईयान जिसनो नजर करे महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने सुख पाई है गुर शब्दी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ गुर शब्दी दर जानी है अंदर महल असराओ खरे परख खजाने पाईयान खोटिया नाही था ओ सब सचो सच वर्तदा सदा सच ने आओ अमृत का रस आया मन वसिया नाओ। श्लोक महला पहला हो मैं करी ता तू नाही तू होवे हो नाहे बुझो ज्ञानी बुझना एह अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत ना पाई है अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानी है जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाई है उतो मत तराहे नानक सो हं हंसा जप जापो त्रिभवन तसै समाहे। महला तीजा मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विर ले जानी है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहया हमै दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे पौ जल विखम संसार पौड़ी मनमुख अंदर ना भलनी मुठे अमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत शास्त्र ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किने ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते।

पौड़ी पाने हुक्म नाए उन पाने सुख पाया पाने सतगुर मेले उन पाने सच ते आया पाने जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जग त्यो पाया। श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पैकी नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद। महला तीजा मन की पत्री वचनी सुखी हूं सुखसार सो ब्राह्मण पलाया खीए जे बुझे ब्रह्म विचार हर साल आहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार अग्गै जात न पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना बिखिया नाल प्यार अंदर सुख ना हो गई मनमुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार। पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा जित भावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है।

लीनो दास अपनो जोत ज्योति रली, प्रभु चरण सरन अनाथ आयो, नानक हर संग चली, केदारा महला पंजवा। हर के नाम की मन रुचे, कोट सांत आनंद पूर्ण, जलत शांति बुझै रहाओ। संत मार्ग चलत प्राणी, पतत उदरै मुचै, रेन जनकी लगी मस्तक, अनक तीर्थ सुचै। चरण कमल ध्यान पीतर, कड़कटै स्वामी सुजै, सरन देव्या पार नानक, बहुर जम नहीं लुजै। केदारा शंत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया रहाओ। पूर रहा सर्वत्र मैं सो पुरख विधाता, मार्ग प्रभ का हर किया, संतन संग जाता, संतन संग जाता, पुरख विधाता काट काट डदर निहालिया। जो सरनी आवे सर्व सुख पावे, तिल नहीं पन्ने कहलिया। हर गुणित गाए सह सुभाए, प्रेम महारस माता, नानक दास तेरी शरणाई, तू पूर्ण पुरख विधाता। हर प्रेम भगत जन बेदया, से आन कत जाही, मीन बिशोहा ना सहै, जल बिन मर पाही। हर बिन क्यों रही है, दूख किन सही है, चात्रक बूंद प्यासिया, कबरैन बिहावै, चकवी सुख पावै, सूरज करण प्रगासिया। हर दर्श मन लागा, दिन सुभागा, अंदन हर गुण गाही, नानक दास कहै बेनंती, कत हर बिन प्राण टिकाही। सास बिना ज्यो दे हुरी, कत सोभा पावै, दर्श बिहुना साध जानो, खिण टिकण न आवै। हर बिन जो रहना, नरक सो सहना, चरण कमल मन बेदया। हरसक बैरागी, नाम लिवलागी, कतो ना जाए नखेदया। हर स्यो जाए मिलना, साध संग रहना, सो सुख अंक नाम आवै। हो कृपाल नानके स्वामी, हर चरण संग समावै, खोजत खोजत प्रभ मिले, हर करना तारे। निर्गुण नीचा नाथ मैं, नहीं दुख बिचारे, नहीं दुख बिचारे, पूर्ण सुख सारे, पावन बिरद बखानिया। भगत वछल सुन अंचलो गहया, घट घट पूर समानिया, सुख सागरो पाया सह सुभाया, जन्म मरण दुख हारे। कर गह लीने नानक दास अपने, राम नाम उर हारे। राग के दारा बाणी कबीर जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उस्तत निंदा दो बिबरजत, तजो मान अब माना, लोहा कंचन सम कर जाना, ते मूर्त भगवाना। तेरा जानो एक याद कोई, काम क्रोध लोमो बिरबरजत, हर पद चीने सोई रहाओ। राज गुण तम गुण सत गुण कही है, एह तेरी सब माया, चौथे पद को जो नर चीने, तिन ही परम पद पाया। तीर्थ बरत नेम सो संजम, सदा रह निकामा, तृष्णा अर माया परम चूका, चितवत आत्म रामा। जेह मंदर दीपक परगासिया, अंधकार तह नासा, निरपव पूर रहे परम पागा, कह कबीर जनदासा। किन्ही बनजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बनजिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी रहाओ। साचे लाए तो सच लागे, साचे के ब्योहारी, साची बस्त के पार चलाए, पहुंचे जाए पंडारी। आपै रतन जवाहर मानक, आपै है पासारी, आपै दह दस आप चलावै, निचल है व्यापारी। मन कर बैल, सुरत कर पेंडा, ज्ञान गुण पर डारी, कहत कबीर सुनो रे संत हो, निभि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत, उल्टो पवन फेरावो, मन मत वार मेर सर पाठी, अमृत तार चुआवो। बोलो पहिया राम की दुहाई, पीवो संत सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई रहाओ।
ਭੈ ਵਿੱਚ

आओ भाई को बुझे हरस पावे भाई, जेते कट अमृत सब ही मैं भावत से पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई, त्रिकुटी छूटे दसवां दर खुले तमन खीवा पाई। अपह पद पूर ताप तह नासे कह कबीर बिचारी, उबट चलनते एह मद पाया जैसे खोंद खुमारी। काम क्रोध

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उधार नहार। बिन नावे मनमुख

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाहा, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपने खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरबान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहरो महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंछ है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावे, निंद कौ अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए ना जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करै ते निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, सागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर्व मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यास पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पहरो महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित डरता फिरै, है निकट यार भेद ना पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़ै नेड़ै सब को कहै, गुरमुख भेद बिरला कोल है, रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए, दर्भ हिरै मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़, अंतर वास्तव दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया लिलाट, सदगुर सेवे खुले कपाट,
ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਟੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਕੋਏ, ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਟੋ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ, ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤਿਨ ਭਉ ਦੂਰ ਕੀਆ ਏਕ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਫਨ ਹੋਏ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ।

कर्तार, जैसी ऊपर नजर करे करतार, तेह जन के सब का इसवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक पढ़ना सा कह कोए। पैरो महला पंजवा, तौ कड़िया जे होवे बाहर, तौ कड़िया जे विसरै नरहर, तौ कड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहा समाए। माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तौ कड़िया जे दूजा करता, तौ कड़िया जे अन्याय को मरता, तौ कड़िया जे कह जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही। तौ कड़िया जे किश होए तिंगाणे, तौ कड़िया जे भूल वजाणे, गुर कहया जो होए सब प्रभ ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा, जो पावे त्यों करे निबेरा। दुतिया नास्त एक रया समाए, राखो पैज नानक सरनाए, पैरो महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठ कैसे गवनहारी, जील बिना कैसे बजर बाप, नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ। बिन जेहवा कहाँ को बगता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेखै, नाम बिना नर कहीं न लिखै, बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरै कैसे राज मंडित, बिन बुझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना ससद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व बेकार, कहो नानक दर का विचार। पैरो महला पंजवा, हों मैं रोग मानख कौ दीना, काम रोग मैंगल बस लीना, दृष्ट रोग पचमोए पतंगा, नाद रोग खप गए कोरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ। जेहवा रोग मीन ग्रस आनो, बासन रोग पवर बिनसानो, हेत रोग का सगल संसारा, त्रिबद रोग में बदे बिकारा, रोगे मरता रोगे जन्मै, रोगे फिर जोनी परमै, रोग बंद रहन रति ना पावै, बिन सतगुर रोग कतै ना जावै, पार ब्रह्म जिसकीनी दया, बहां पकड़ रोगों कढ़ लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। पैरो महला पंजवा, चीत आवै ता महा आनंद, चीत आवै ता सब दुख पंज, चीत आवै ता सरदा पूरी, चीत आवै ता कबे न चूरी, अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरै दियो रंग लाए रहाओ। चीत आवै ता सर्ब को राजा, चीत आवै ता पूरे काजा, चीत आवै ता रंग गुलाल, चीत आवै ता सदा निहाल, चीत आवै ता सद धनवंता, चीत आवै ता सद निपरंता, चीत आवै ता सब रंग माणे, चीत आवै ता चुकी काणे, चीत आवै ता सहज कर पाया, चीत आवै ता सुन समाया, चीत आवै सद कीर्तन करता, मन मान्या नानक भगवंता। पैरो महला पंजवा, बाप हमारा सद चरंग जीवी, पाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा बनासी, कुटुंब हमारा नहीं करवासी, हम सुख पाया ता सवै सुहेले, गुरपुरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते उच्चे, देश मेरे बेअंता पूछे, राज हमारा सदी निचल, माल हमारा खूटा बेचल, सोभा मेरी सब जुगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर,
कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे मांझ, पिता पुत्रल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूते कै रंग लीने, पहरो महला पंजवां। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्साते। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पए दयाला, नानक दास देख पए निहाला। पैरो महला पंजवां, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण, सतगुर कहो सदबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरो महला पंजवां, नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तंते गया। नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठसठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूढ़ सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुनै चार, अवर कर्म लोकै पतियार। पैरो महला पंजवां, नमस्कार ता कौ लख बार, एहो मन दीजै ता कौ वार। सिमरन ता कै मिटै संताप, होए आनंद न व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जां की दृष्ट दुख डेरा टह, अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊणे सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरो महला पंजवां, मोहे दुहागन आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी। मिट्यो दुखर सगल संताप, गुर होए मेरी माई बाप। सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटिया देर भय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज।

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाक रहा दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ। हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दातारा। तव प्रसाद रंग रस माने, घट घट अंतर तुम्हें समाने। तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, सा संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास। हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे। पैरो महला पंजवा, सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार। ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटे हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट पया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग। दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापन हार। जा का हुक्म ना मिटे कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन में लय दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रखनहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक उसदा प्रतपार है भगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जम ते राखै देकर हाथ निर्मल शोभा निर्मल दीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान पैरव महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सदगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरव महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सो वड भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरह संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिदमाहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जना आया प्रभ की सरना आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने पैरो महला पंजवा नाम लै तो किश बिग ना लागे नाम सुन तो जम दूरों भागे नाम लै तो सब दुख है नास नाम जप तो हर चरण निवास निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमरत तो किस चाख ना जो है हर सिमरत तो दैत देव ना पुहै हर सिमरत तो मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जो ना रुदय हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया केला जात अजात जपै जन कोए जो जपै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरो महला पंजवा आपे सास्ते आपे भेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वत करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ आपे वन तरण त्र पवन सार जाकै सूत परोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्बाणी आपे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए तिस बिन दूजा नाही कोए सागर तरिए नाम कै रंग गुण गावै नानक साध संग
ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾਂ ਕੈ ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨਤਾ ਕੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਹੀ ਜਨ ਧਨ ਪਹਿਰਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ ਭੈ ਪ੍ਰਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਰਹਾਓ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋਡੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਬੰਧ ਨਰਾਇਣ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪ੍ਰਖਾਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਿਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ

नाव मेरे बंधप नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हाँ ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरे, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहां पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना उपार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कहे कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सहिस्माना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कत न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चेतना धरे। रहाओ जो निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्दन कह जाए, दिया यादर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला न मिटी जाई। कह कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारिंग पानी। अब ना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुबिद कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुधसार, तह तुम मिलकै करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन करम मेरा कर कर मरै। निज पद ऊपर लागो ध्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। रहाओ मूल द्वारा बंदिया बंद, रावी ऊपर गए राख्या चंद। पश्चिम द्वारा सूरज तपै,
ਮੇਰ ਡੰਡ ਸਿਰੀ ਉੱਪਰ ਬਸੈ ਪਛਮ ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਸਲਿਓੜ ਤੇ ਸਲੀ ਉੱਪਰ ਖਿੜਕੀ ਔਰ ਖਿੜਕੀ ਉੱਪਰ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਕਾਂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਸੋ ਮੁੱਲਾਂ ਜੋ ਮਨ ਸਿਉਂ ਲਰੈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਸਿਉਂ ਜੁਰੈ ਕਾਲ ਪੁਰਖਾ ਮਰਦੈ ਮਾਨ ਤਿਸ ਮੁੱਲਾਂ ਕਹੋ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਹਜੂਰ।

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर यान गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान शत्र सर तर जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदा ए कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदबोलंता सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहाओ अंतर देव न जन अंध भ्रम का मोहया पावे फंद ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई कहत कबीर हाँ कहो पुकार समय देख सकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल में मीन माया के बेदे दीपक पतंग।

डकाई रहाओ पंखी मृग माया मैराते साकरमाखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कह कबीर जिस उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु काज सवार आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राय जीतो बूढ़े हार उतरै गुर प्रसादी पार उतरै दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्तर सह सलाह रह जाके सवा लाख पै कामता के सेख जो कहिए कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावै मंजरस दूर महल को पावै रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जर्द रूबानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हमसरा पिखारी दियो जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पेस्तन जीक राख रह माना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत सर आडी प्रबल माया जन गरीब को जोर न पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापुन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मनमावासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे परजाली एक चुट सजाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दो दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत सिमरन की कटी काल पै फासी दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर राज लियो अबनासी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगे तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहे समाये रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कह कबीर को संग ना साथ जल थल रखन है रघुनाथ पहराओ कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास जामे जोत करे प्रगास बिजली चमके होया आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागे जरा मरण छूटे परम भागे रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हम मैं गावन गावे गीत अनहद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगम्या गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावे को तरनी तरमंत
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दल अभय अंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंसो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइये गुर की साम। तारी न टरे आवे न जाए, सुन सहज मेरे उसमाए। मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र माने असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। राहो कोट चंद्र में करे चराक, सुरत तीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थर। समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार। कोट कमेर पर पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहर, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल, कोट कला खिले गोपाल। कोट जग जा कै दरबार, गंधर्व कोट करे जयकार। विद्या कोट सब गुण कह, तउ पार ब्रह्म का अंत न लह। बावन कोट जा कै रोमावली, रावण सैना जहते शली। सहस कोट बहु कहत पुराण, दुर्योधन का मथिया मान। कंदर्व कोट जा कै लवे न धरै, अंतर यंत्र मन साहरै। कह कबीर सुन सारंग पान, देह अपै।

नाम असंख कोटियन पूजा करी, एक ना पूजस नामै हरी। प्रणवै नाम दे हो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताकै निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनकै पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम दे हो नाकै बिना, ना सोहै बत्ती सलखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्या तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रचता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू कूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू पूम पै आर ना पावै। भणत नाम दे एक नाम निस्तारै, जे गुर मिलै ते पार उतारै। हस्त खेल तो तेरे देहुरे आया, भगत कर तो नामा पकड़ उठाया। हिन्नड़ी जात मेरी जात मराया, शिपे के जन्म काहे कवाया। रहाओ

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जपतो कछ नहीं संताप, गोविंद जपतो समट अंधेर, हर सिमरतो कछ नाए फेर। बसंत हमारा राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस। हर भगतहीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग। निकट पेख प्रभ करण हार, ईतूत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जा कै सिमरण नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभ दास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवे नानक राम नाम। सार उत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, साखत फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहित सिद्ध नव निध एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रमण योग, जित रवै सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवां, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सहित होना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम।
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ, ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ, ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ, ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ, ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ, ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ, ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ, ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ, ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੰਤਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ, ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜੀਤੋ, ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ, ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ, ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ, ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ।

जोगी जंगम अर सन्यासो सभी पर डारिये फास। जेह जे अर को नाम समार ते पवसागर उतरे पार। जन नानक हर की सरनाए दीजे नाम रह गुण गाए बसंत महला नावा। माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया तृष्णा सकल बिनासी मन ते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम तन बिनसै जम स्यों परै काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार तन दारा संपत ग्रहे कै संग ना चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग बसंत महला नावा। कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग कछ बिगड़ियो नाहन अजहो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कर बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुध बुदा हेर मात्र बूंद ते तार चक फेर। सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियंचल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए जो किश कीनस प्रभर जाए। पै माने निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो

तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण योग, ने केवल राजना सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम सुवाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद। बसंत हंडोल महला पहला, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार, कर महल चार बहाली, चारे दीवे चौ हथ दीए एका एका वारी, मेहरवान मधसूदन माधव, ऐसी संगत तुम्हारी रहाओ, घर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी, धरती देग मिलै कवेरा, भाग तेरा भंडारी, ना सा बूर होवै फिर मंगै, नारद करे खुआरी, लाभां देरा बंदी खाना, अवगुण पैर लोहारी, पूंजी मार पवै नित मुदगर, पाप करे कोटवारी, पावै चंगा पावै मंदा, जैसी नजर तुम्हारी, आद पुरख को अल्लाह कही है, सेखा आई वारी, देवल देवत्या कर लागा, ऐसी कीर्त चाली, कूंजा बाग निवाज मुसल्ला, नील रूप बनवारी, घर घर मियां सबना जिया, बोली अवर तुम्हारी, जे तू मीर महीपत साहिब, कुदरत कौन हमारी, चारे कुंट सलाम करेंगे, घर घर सिफत तुम्हारी, तीर्थ सिमरत पुन दान, किश लाहा मिलै दिहाड़ी, नानक नाम मिलै वडियाई, मेका कड़ी संभाली, बसंत हिंडोल कर दूजा महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई, अन क्यो पाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन, सतगुर मिलै ता पूरा पाई है, भज राम नाम निशान रहाओ, एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदग चुआया, फिर हरिया हुआ रसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मोए सब सागत, हर गुरमति कर पाया, दीना दीन दयाल पय है, जो कृष्ण बिद्र कर आया, मिलियो सुदामा पावनी तार, सब किश आगे दालद पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकरे आ परखाई, जे सब सागत करे बखीली, एक रती तिल ना कटाई, जन की उसत है राम नामा, दे दे सोभा पाई, निंदक साकत खब ना सकै तिलो, अपने कर लू की लाई, जन को जन मेर सोभा पावै, गुण में गुण परगासा, मेरे ठाकर के जन प्रीतम प्यारे, जो होवै दासन दासा, आपे जल परंपर करता, आपे मिल मिलावै, नान गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जलै समावै, बसंत महला पंजवां, कर पहला दो तुगिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद, सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कहे एक बार, बाल्मीकि होवा साध संग, ध्रुव को मिलिया हर निसंग, तेरिया संतां जाचौ चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ, गुण का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख, बिपर सदामे दालद पंज, रे मन तू पी पज गोबिंद, बदक उदारियो खम परहार, कुबजा उंदरी अंगुष्ट तार, पिदर उदारियो दास्त पाए, रे मन तू पी हर ते आए, प्रहलाद रखी हर पैज आप, बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेव्यांत बार,
ਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਰੈ ਪਾਰ, ਤਨੈ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਤਰਲੋਚਨ ਗੁਰਮਿਲ ਪਈ ਸਿੱਧ। ਬੇਣੀ ਕਹੋ ਗੁਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਹੋਏ ਦਾਸ, ਜੈ ਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹੰ ਮੇਵ, ਨਾਈ ਉਦਰਿਓ ਸੈਨ ਸੇਵ। ਮਨ ਡੀਗ ਨਾ ਡੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਤਰਸੈ ਸਰਨ ਪਾਏ, ਜਿਹਾ ਨਗਰੋ ਠਾਕਰ ਕੀਓ ਆਪ, ਸੇ ਤੈ ਲੀਨੇ ਭਗਤ ਰਾਖ। ਤਿਨਕਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੋਏ, ਇਹ ਵਿਦ ਦੇਖ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੇਵ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਹਰ ਜੀਓ ਬਸੈ ਸੰਗ। ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਣਕ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਜੋਨ ਮਾਹੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਨਰਕ ਪਾਹੇ, ਭਗਤ ਬਿਹੂਨਾ ਖੰਡ ਖੰਡ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਜਮ ਦੇਤ ਡੰਡ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੀਤ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤ। ਰਹਾਓ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਵਤ ਕਹੂੰ ਕਾਜ, ਤੂੰ ਬਾਦਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਸਾ।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरन का साज ना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाई, कर्म लिखन तै पाई है एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्र पौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बदे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रह, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याईन सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखाओ तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यों कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कै पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्याकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाड़ कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहा पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडे मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहा सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्यो रसाए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਦੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਨ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे, इंद्री की जूठ उत्तर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया, जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर ते नर सूचे साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांगो, कह चंदन चोवा बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै लोग हसै, चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा, लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला, रहाओ अनल बेड़ा हो खेव ना सकाऊ तेरा पार ना पाया बीठला, हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा, नामा कह हों तार पी ना जाना, मोको बहां देहे बीठला, सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती, पीछे तिनका लेकर हागती, जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती, सर तोवन चाली लाडली, रहाओ तोबी तोवै बिरा बिराता, हर चरण मेरा मन राता, पंत नाम देओ रम रहया अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तुझे सुजनता कशु नाहे, पहरावा देखे उपजाहे, गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ, तू काए गर्भ बावली, जैसे पांदव खूंब राज, तू तिस्ते खरी उतावली, रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद, तन सुगंध ढूंढे परदेश, आप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुवार, पुत्र कलत्र का करे हंकार, उठाकर लेखा मंगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसे पुकारे पियो पियो, साधु की जौ लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल, इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे, और किसी के

जैसा करै कहावै तैसा ऐसी बनी जरूरत, होवै लिंग चिंग न होवै ऐसी कही है सूरत, जो उस इच्छे सोफल पाए ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुरसब्दी मिलिया, सतगुर कै पाणे जो चलै हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्श में लाया न फिर गर्भ ना गलिया। श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान, जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा। नौमी नेम सच जे करै, काम क्रोध तृष्णा उचरै, दसवीं दसे द्वार जे ठाकै, एकादशी एक कर जाणै, द्वादशी पंच वसगत कर राखै, तौ नानक मन मानै। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजै पौड़ी, भुगत राजे रंग राय संचय विखमाया, कर कर हेत वधाए दे पर दर्प चुराया, पुत्र कलत्र ना विस है बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई पछता पछताया, जम दर्ब दे मारी है नानक हर पाया। श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत, मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगिए पाए, काल खाए किश हथों दे, नानक राहो पछाणे से। महला पहला। मनो जे अंधे कूप, कहया बिरद ना जाननी, मन अंधे उंधे कवल दिसन खरे करूप, एक कह जान कहया बुजन ते नरसुर स्वरूप, एक ना नादना बेदना गी रस, रस कस ना जानंत, एक ना सुध ना बुध ना अकल सार, अखर का प्यो ना लहंत, नानक से नर असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी। गुरमुख सब पवित है तन संपै माया, हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया, जो हर नाम ते आए दे तिन तोट ना आया, गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया, नानक भगता होर चेतना आवई हर नाम समाया। श्लोक महला चौथा। सतगुर सेवन से बटभागी, सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी, ग्रह कुटाम मैं सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा। गणतै सेवना होवई, कीता थाए ना पाए, सबदै साधना आयो सच ना लगो पाओ, सतगुर प्यारा ना लगई मन ठिया वै जाए, जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पिछाहां जाए, सतगुर की सेवा चाकरी जे चलै सतगुर पाए, आप गवाए सतगुरु नो मिलै, सहजे रह समाए, नानक तिन्ना नाम ना

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सवाए ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जै जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नवनिध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा है दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगल अंदेसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पए सुहेले प्रभु पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बो जोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूढ़ मुग्ध खल खरते कागर नाव लंघै कथ सागर, बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मै जरते, नानक सरन चरण कमलन की तुमन डारो प्रभ करते। आराग मलार महला पंजवा दोपदे कर पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी, हाँ एक खिन तिस बिन रह ना सकाऊं, प्रीत हमारी लागी रहाओ। उनके संग मोहे प्रभ चित आवै, संत प्रसाद मोहे जागी। सुन उपदेश पय मन निर्मल, गुण गाए रंगरंगी। एहो मन दे किए संत मीता, कृपाल पय वडभागी। महासुख पाया बरन ना साकौ, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई, सगल सहेली सुख पर सूती जेह कर लाल बसाई रहाओ। मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला, मोहे निर्गुण क्या चितराई। करो बराबर जो प्रे संग राती, ए हमें की टीठाई। पई निमाणी सरन एकता की, गुर सतगुर पुरख सुखदाई। एक निमुख मैं मेरा शब्द काटिया, नानक सुख रहन बिहाई। मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ, बरस प्यारे मन सधारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ। हम तेरी धर स्वामिया मेरे, तू क्यों मनो बिसारे। स्त्री रूप चेरी की न्याई, सोभ नहीं बिन परतारे। बिनो सुनियो जब ठाकर मेरा, बेग आयो कृपा तारे। कहो नानक मेरो बनियो सुहागो,
पत सोभा पले आचारे मलार महला पंजवा। प्रीतम साचा नाम ते आए दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाओ। दुश्मन हते दुखी सब व्यापे हर शरण आई आया रख नहारै हाथ दे राखे ओ नाम पदार्थ पाया। कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्बल मन ली दिया गुण निधान नानक मन वसिया।

प्रेम सिखाई तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ। सरवरो कमलो किरण आकाशी बिकसै सहि सुभाई प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो ढेर बिलप करे बिल लाई कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खेन तिल रह न सकै पल जन बिन मरन जीवन तिस ताई। तन वांडी पिर देश निवासी सचे गुरपै शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभृदय निवासी भगत रती हर खाई। प्रयो प्रयो करै सब ही जेती गुर पावै प्रयो पाई प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेर मिलाई। समय जियो जियो है सोई घट घट रहा समाई गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सहि समाई। अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही पिर पाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच ढर पाही। इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिनस्त बार न लागे बवरे हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ। जय जगदीश प्रभु रखवारे राखे परखे सोई जेती है तेती तुझ ही ते तुम सरेवर ना कोई। जियो पाए जुगत हथ कीनी आपे गुरमुख अंजन अमर अनाथ सर्ब सिर मोरा काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो रंगन चिहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोवै जन मरै खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहां कर तरवर सरपन डसै दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिखिया गुरमत जारी मन तन हेम पहे सच पाया हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत रखो साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै बदक कर्म कमावै सतगुर मिलै ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देह साच बिन साची निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावै बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला चात्रक मीन जल ही ते सुख पावै सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ प्रे स्यो प्रीत ना उल्टै कबहू जोतै पावै साई। नींद गई हम मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा नाम सुभाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रिजाई। प्रे बिन सिंगार करी तेता तन तापै कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सका बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझे बपड़ी सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझ ते मन मानिया कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली ऊंडी जल पर नाल डूंगरू चौगड़ पाताल।

नावे की जोत, नाम आधार चला गुर कै पै भेत, रहाओ सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिय सचै तान, नाम समाल सरूड़ी बाण, थै पावे दरले स्पिराण, ऊंडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना उची तार, निज करवासा तह मगना चलनहार, जित कर वसै तू है बिद जाने, बीजो महल ना जापै, सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दग ब्याशा पै, करण पलाव करै बिल लातो, बिन गुर नाम ना जापै, पल पंकज मैं नाम छडाए, जे गुर शब्द सिंजापै, एक मूर्ख अंधे मुक्त गवार, एक सतगुर कै पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मुख द्वार, नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर करनी सच बाणी, इंद वरसै तरत सुहावी, कट कट जोत समाणी, कालर बीजस दुरमत ऐसी, निगुरे की निशानी, सतगुर बाजो कोर अंधारा, डूब मोए बिन पानी, जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए, हुक्मे बांधा कार कमाए, एक शब्द रचै सच समाए, चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा, चहो दिस नाम पतालं, सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा, कर्म मिलै बयालं, जामन मरना दिसै सिर उबो, खुदया निंद्रा कालं, नानक नाम मिलै मन पावै, साची नदर रसालं, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार ना जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आड़ फाथी जाल, अलख ना जा चर दे समाल, रहाओ एक जी कै जिया खाही, जल तरती बूढ़ी जल माही, सर्व जी किए प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल फास पड़ी अत पारी, ऊंडना सांकै पंख पसारी, रस चूगै मन मुख गावार, फाती छूटै गुण ज्ञान विचार, सतगुर सेव टूटै जमकाल, हृदय साचा शब्द संभाल, गुरमत साची शब्द है सार, हर का नाम रखै उरतार, से दुख आगै जे भोग।

तन सुख वसै आए रोग गवाए अपना ता नानक वैद सदाए। पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दिते वेद पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सुबाया। ईस महेसर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदै लाए आप छपाया धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया। श्लोक महला दूजा। सामने आया हे सखी कंतै चित करे हो नानक चूर मरै दोहागणी जिनवरी लागा ने हो। महला दूजा। सामने आया हे सखी जल हर बरसन हार नानक सुख सवन सोहागणी जिन सह नाल प्यार। पौड़ी आपे छिंज पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़थू पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप पिड़ै मारे आप कार्ज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्म लिखै सिरलेख। विण कलम मसवाणी है सतसंगत में लाप जिथे हर गुण सदा वखाणी है। नानक सच्चा शब्द सलाहे सच पछाणी है। श्लोक महला तीजा। ऊनव ऊनव आया अवर करेंदा वन क्या जाना तिस सास्यो केवरे सी रंग। रंग रहया तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख ना होए। महला तीजा। ऊनम ऊनम आया वरसै नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंतै स्यो मन भंग। पौड़ी दोवै तरफा उपाए एक वरतिया बेद बाणी वरताए अंदर वाद कतिया। पर विरत नर विरत हाठा दोवै विच धर्म फिरै रह बारिया मनमुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी नीचो दरगै हारिया। गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चै अंदर महल शब्द सवारिया। से भगत दुत पावदे सच्चै नाए प्यारिया। सतगुर सेवन अपना तिन्ना विटा हो वारिया। श्लोक महला तीजा। ऊनव ऊनव आया वरसै लाए झड़ी नानक पाणे चलै कंतकै सो माणे सदा रली। महला तीजा। क्या उठ उठ देखो बप्पड़े इस मेघै हथ किश नाहे जिन एहो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे। तिसनो मन वसाए सी जा को नदर करे नानक नगरी बाहरी सब करण भला करे। पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत ना लागै वार आडाने आकाश कर खिरमै टाए उसारन हार। आपे जगत पाए कै कुदरत करे विचार मनमुख अगै लेखा मंगी बहुती होवै मार गुरमुख पत स्यो लेखा निबड़ै बख्शे सिफत भंडार। ओथै हथ ना अपड़ै कूक ना सुनिए पुकार ओथै सतगुर बेली होवै कड लै अंती वार। एना जनता नो होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार। श्लोक महला तीजा। बाबी हा जिसनो तू पुकारदा तिसनो लोचै सब कोए अपनी कृपा करके वससी वण तरण हरिया होए। गुरप्रसादी पाई है विरला बूजै कोए बहिंदिया उठदिया निरति आई है सदा सदा सुख होए नानक अमृत सदही वरसदा गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा। कल मल होई मेदनी अरदास करे लिवलाए सच्चै सुनिया कन दे तीरक देवै सही सुभाए। इंद्रै नो फरमाया बुठा शह बरलाए अन्न तन उपजै बहुकणा कीमत कहण न जाए। नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देंदा रिजक संभाए। जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आए। पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चै लहै मिलाए दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिलै ना मिलिया जाए। आपे जोड़ विछोड़े आपे कुदरत दे दिखाए
मोह सोग वियोग है। पूर्व लिखिया कमाए हम बलिहारी तिन कौ, जो हर चरणी रहे लिवलाए। जो जल में कमल अलिप्त है, ऐसी बनत बनाए, से सुखी है सदा सोहने। जिन विचों आप गवाए, तन सोग वियोग कदे नहीं, जो हर कै अंक समाए। श्लोक महला तीजा, नानक सो साला ही है, जिस विच सब किश होए, तिस सरे वो प्राणी हो, तिस बिन अवरना कोए। गुरमुख हर प्रभ मन वसै, तां सदा सदा सुख होए, सहसा मूल न होवई, सब चिंता विचों जाए। जो किश होए सो सहजे होए, कहना किशु ना जाए। सच्चा सह मन वसै, तां मन चिंदिया फल पाए, नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लैन पन्ने पाए। महला तीजा, अमृत सदा वरसदा, बूजन बूजन हार, गुरमुख जिनी बुझिया, हर अमृत रखिया उरतार। हर अमृत पीवै सदा रंग राते, हमें तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है, वरसै कृपा तार, नानक गुरमुख नदरी आया, हर आत्म राम मुरार। पौड़ी अतुल क्यों तोली है, मन तोले पाया ना जाए। गुर कै शब्द विचारी है, गुण में रह समाए। अपना आप तोलसी, आपे मिलै मिलाए, तिसकी कीमत ना पवै, कहना छू ना जाए। हम बलिहारी गुरे अपने, जिन सच्ची बूझती बोझाए, जगत मुसे अमृत लुटी है, मनमुख बूझ ना पाए। विण नावै नाल ना चलसी, जासी जन्म गवाए। गुरमती जागे तिनी कर रखिया, दूता का किश ना वसाए। श्लोक महला तीजा, बाबीहा ना बिललाए ना तरसाए, एहो मन खसम का हुकुम मन, नानक हुकम मन्या ते खुतरै चढ़ै चवगण वन। महला तीजा, बाबीहा जल में तेरा वास है, जल ही माए फिराहे, जल की सार न जानई, ता तू कुकण पाए। जल थल चहु दिस वरसदा, खाली को थाओ नाहे। एते जल वरसदै तिख मरै, भगत न के नाहे। नानक गुरमुख तिन सोजी पई, जिन वसिया मन माहे। पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर, किन अंत ना पाया, गुरमुख नाम ते आए तुझै समाया। जोग शक्ति गुबार तिसी पाया, जला बिंब असराल तिने वरताया। नील अनिल अगम सुरजीत सबाया, अग्नि उपाई वाद पुख तिहाया। दुनिया कै सरकार दूजा पाया, रखे रखण हार, जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, एहो जल सब तै वरसदा, वरसै पाए सुभाए, से बिरखा हरियावले, जो गुरमुख रहे समाए। नानक नदरी सुख होए, इना जनता का दुख जाए। महला तीजा, पिनी रैन चमकिया, उठा शबर लाए, जित उठा अंतर बहुत उपजै, जा सहो करे रजाए। जित खाद मन तृप्ति है, जिया जुगत समाए, एहो तन करते का खेल है, कदे आवै कदे जाए। ज्ञानिया का तन नाम है, सद ही रह समाए, नानक जिन को नजर करे, ताए हो तन पल पाए। पौड़ी आप कराए करे आप, हों कैसे करी पुकार, आपे लेखा मंगसी आप कराए कार। जो तिस पावै सोथी है, हुक्म करेगा वार, आप छडाए छुट्टी है, आपे बख्शन हार। आपे वेखै सुने आप, सब सहदे आधार, सब मैं एक वर्तदा, सिर सिर करे विचार। गुरमुखिया विचारी लगे सच प्यार, नानक किसनो आखी आपे देवनहार। श्लोक महला तीजा, बाबीहा एहो जगत है, मत को परम पुलाए, एहो बाबीहा पशु है, इसनो बुझण नाहे। अमृत हर का नाम है, जित पीतै तिख जाए, नानक गुरमुख जिन पिया, तिन बहुण न लागी आए। महला तीजा,
ਮਲਾਰ ਸੀਤਲ ਰਾਗ ਹੈ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਾਂਤ ਹੋਏ, ਹਰ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਏ, ਵੁੱਠੇ ਜੀਆਂ ਜੁਗਤ ਹੋਏ ਧਰਨੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਗਤ ਸਭ ਜਲ ਹੈ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ, आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना, दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना, हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन, प्रभ पय है कृपेन, मान मोह त्याग छोड़ आओ तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ, बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख हर नंगा, पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खाटंगा, दर्शन भेटे बिन सतसंगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा, हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा, सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवां, कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तिख बूझ गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो, हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ, जैसी करी प्रभ मोसियो मोसियो, ऐसी हों कैसे कराऊं, हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए, त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो, जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी, सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाकर रहो समाए, एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवा, कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्यागी है गुमान मान पेखता दयाल लाल, हां हां मन चरण रेन रहाओ, हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नाम दान, तज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवा, प्रभ कहन मलन दहन लहन, गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ, तटन खटन जटन होमन, नाही डंड धार सुवाओ, जतन पांतन तपन भ्रमन, अनक कथन कथते नहीं थहां पाई ठाओ, सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवा, करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पतत पावन भगत पवछल, पै हरन तारन तरन रहाओ, नैन तिबते दर्श पेख, जस तोख सुनत करन, प्राण नाथ अनाथ दाते, दीन गोबिंद सरन, आस पूर्ण दुख बिनासन, गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवा, चरण सरण दयाल ठाकर आन नाही जाए, पतत पावन बिरद स्वामी, उधर ते हर त्याए रहाओ, संसार गार बिकार सागर, पतत मोह मान अंध, बिकल माया संग तंद, कर गह प्रभ आप काढ़ो, राख लियो गोबिंद राए, अनाथ नाथ सनाथ संतन, कोट पाप विनाश, मन दर्शने की प्यास, प्रभ पूर्ण गुणतास, कृपाल दयाल गोपाल नानक, हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवा, वार वारो अनक डारो, सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ, कनक मंदर पाठ सेज सखी, मोहे नाहे इन स्यों तात, मुक्त लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ, रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सुख बिहात। कानड़ा महला पंजवा, अहं तोरो मुख जोरो, गुर गुर करत मन लोरो, प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ,
ਗ੍ਰਹਿ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਤੋਰੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ਛੁਟਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਰੋ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹਿਰੋ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਓ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬੱਪਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ ਜਿਸੈ ਉਧਾਰੋ ਆਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਪੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ ਜਾਤ ਜੀਓ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਖੀ ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਤਾਂਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰ ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰ ਪਾਰ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਆਏ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ਰਹਾਓ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ਕਥੂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰੈ ਬਸਾਏ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਅੰਤ ਜਾਏ ਥਾਂ ਥਨਾਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪਾ ਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ਰਹਾਓ ਕਹਿਣ ਭਵਨ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਕ ਉਕਤ ਚਤਰਾਈ ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਕਿਉ ਪਾਵਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜੋ ਕਿਰਪਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ

राम नाम राम रव रहे, राम रामो राम रमीत, काट काट आत्म राम है, प्रभ खेल की ओर रंगरीत। हर निकट वसै जग जीवना, प्रगास की ओ गुरमीत। हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले, जिन लिखिया तुर हर प्रीत। जन नानक नाम ते आया, गुरबचन जपियो मन चीत। महला चौथा, हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो, भाग वसै वड भाग। गुरपुरै देखा लिया, नानक हर लिव लाग पौड़ी। तन तन सुहावी सफल घड़ी, जित हर सेवा मन पाणी। हर कथा सुनावहो मेरे गुरसिख हो, मेरे हर प्रभ अकथ कहानी। क्यों पाईए क्यों देखिए, मेरा हर प्रभ सुख सुजानी। हर मेल दिखाए आप हर, गुरबचनी नाम समाणी। तिन विटो नानक वारिया, जो जपदे हर निर्बाणी। श्लोक महला चौथा, हर प्रभ रते लोयना, ज्ञान जन गुरदे मैं प्रभ सज्जन पाया। जन नानक सहज मिले महला चौथा, गुरमुख अंतर सांत है। मंतर नाम समाए, नाम चितवै नमो पड़े, नाम रहे लिवलाए। नाम पदार्थ पाईए चिंता गई बिलाए, सतगुर मिले नाम उपजै तृष्णा पुख सब जाए। नानक नामे रतिया नामो पल्लै पाए पौड़ी, तुद आपे जगतो पाए कै, तुद आपे वसगत कीता। एक मनमुख कर हराए अन, एक ना मेल गुरु तिन्ना जीता। हर उत्तम हर प्रभ नाम है, गुरबचन सुभागै लीता। दुख दालत सबो लह गया, जा नाउ गुरु हर दीता। सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगतो पाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा, मन अंतरहम मैं रोग है, परम पूले मनमुख दुर्जना। नानक रोग मंजाए, मेरे सतगुरु साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन ताम संगारवा, जा देखा हर नैणे। नानक सो प्रभ मैं मिले, हौ जीवा सद सुने पौड़ी। जगन्नाथ जगदीशर करते, अपरंपर पुरख्या तोल। हर नाम ते आवो मेरे गुरसिख, हर उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हिरदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। बड़भागी संगत मिले, गुर सतगुर पूरा बोल। सब त्यावो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम चगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदया, सर संदया गा वार। नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संदया तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखान। जेकर दूजा देख दे, जन नानक कढ़ दिचन पौड़ी। जल थल महियल पूर्ण अपरंपर सोई, जी जंत प्रतपालदा जो करे सो होई। मात पिता सुत भरात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर रव रहया, जपयो जन कोई। सगल जपो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दर गए वंज। महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा। सब जी तुम्हारे, सब तु दैनो आराधे, दंद हे प्यारे। हर दाता दा तार हथ कढ़िया, मीहू बठा संसारे। अन जमया खेती भाओ कर, हर नाम समारे। जन नानक मंगे दान प्रभ, हर नाम आधारे पौड़ी। इच्छा मन की पूरी है, जपिए सुख सागर। हर के चरण आराधी है, गुर शब्द रतनागर। मिल साधु संग उदार होए, फाटे जमकागर। जन्म पदार्थ जीती है, जप हर बैरागर। सब पवो सरण सदगुरु की, बिनसै दुख दागर। श्लोक महला चौथा, हाउ टूडेंदी सज्जना, सज्जन मंड नाल। जन नानक लख ना लखी है, गुरमुख दे देखाल। महला चौथा, नानक प्रीत लाई तिन सचै, तिस बिन रहन ना जाई। सतगुर मिले ता पूरा पाई है, हर रस रसन रसाई पौड़ी। कोई गावे को सुनै, को चुर सुनावै।

मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटिया हर के गुण गावे, आप तरा संगीत राहे सब कुटुंब तरावे, जन नानक तिस बर हारण है, जो मेरे हर प्रभाव है सुध। राग कानला बाणी नाम देव जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ। बसै कटा कट लीप ना शीपै, बंधन मुक्ता जात ना दिसै, पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठ ले ऐसा। राग कल्याण महला चौथा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ, निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह पंगुर प्रसाद। रामा रम रामा अंतना पाया, हम बारक प्रतपारे तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख अगम है, आगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोबिंद गुण गोबिंद सद गावे, गुण गोबिंद अंत ना पाया, तू अमित अतोल अपरंपर, स्वामी बहु जपिया था ना पाया, उस्तत करे तुमरी जन मादो, गुण गावे हर राया, तुम जल निधा मीने तुमरे, तेरा अंत ना कत हूं पाया। जन कहो कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया, हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया रहाओ। गुर के पग सिमरो दिन राती, मन हर हर हर बसया, हर हर हर कीर्त जग सारी, कस चंदन जस कसया, हर जन हर हर हर लिवलाई, सब साक्त खोज पया। जो किरत संजोग चलियो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया, जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया, कहां पया दैत करी बखीली, सब कर कर चर परया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब काले मुख ग्रसिया, हर जन हर हर हर प्रभ राखे, जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे, गुरु उपदेश हर नाम ते आयो, सब किल विख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस गाए ना साकै, बहु कीजै बहु रसन थे, बार बार खिन पल सब गावै, गुण कह ना सकै।

तुम जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्पया रापो कोई मिले प्रभु मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभु तुमरे, जन नानक के प्रभु समर्थ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वड भाग मथई, जै दरगे प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हम मैं मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

रस रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुर पारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। स्वर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पसम करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दीजै। साधु साधु साध जनी के, जनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों करता अंत नीजै। तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिलै मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम रामो राम रवीजै, साधु साधु साध जनी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोल त डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सब ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अनुग्रो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागण हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझे अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवे तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावे जब लग दूजी राई। अहनस जियां देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिले वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

हर हर आप धरियो हर जन में जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुबदे बह दे कडबा। जप मनो राम नाम अर्धम्बा उपजंपो पाए न पाइए कतहूं। गुरपुर हर प्रभ लभ रहाओ राम नाम रस राम रसायण। रस पिया गुरमत रसबा लोह मनूर कंचन मेर संगत। हर उर तारियो गुर हरबा हाँ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने। पुत कलत मोहे लुभबा तिन पग संतन सेवे कभू। ते मनमुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो। हम परे हार तुम सरन बा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी। जन नानक दास तुम नवा शका एक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मानो हर हर नाम निधान। हर दरगह पावे मान जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान। सुन मानो हर कीर्त अठसठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान। खिन खोवे पाप कोटान मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवां विभास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया। पंच तत् रजोत निवाजिया। सहजा धरत बर्तन कौ पानी। निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते। हर सोग ते रहे निरारा ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए। मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जलथन मीत सो हर सेवो नीता नीत। तहां सिखाई जै कोई ना होवे कोट अपराध एक खिन में तो होवे। दात करे नहीं पछोतावे एका बख्स फिर बहुर ना बुलावे। किरत संजोगी पाया पाल साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवां। प्रभ की सेवा जन की शोभा। काम क्रोध मिटे तिस लोभा। नाम तेरा जन कै भंडार गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई काट जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जान पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै ना जाए अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवां। गुण गावत मन होए आनंद आठ पैर सिमरो भगवंत। जा कै सिमरन कलमल जाहे तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया जिस प्रसाद मोहे नहीं माया। हालत पलत जिन गुरै सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी गुर पूरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव वड़े पाग पाई है हर सेव। प्रभाती महला पंजवां। सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाए।

काल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग जय जयवंती महला नवा राम सिमरो राम सिमरो एह तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात बिनस जह है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है जय जावंती महला नावा राम भज जन्म सिरात है कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ सगल परम डार देहे गोविंद को नाम लेहे अंत बार संग तेरा यह एक जात है बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है जय जावंती महला नावा रे मन कौन गत होए है तेरी एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिखियन सिंह अत लुभान मत नान फेरी रहाओ मानस को जन्म लीन सिमरन न निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगहो परी बेरी नानक जन कह पुकार सुपने ज्यों जग पसार सिमरत नहे क्यों मुरार माया जा की चेरी जय जावंती महला नावा बीत जह बीत जह जन्म अकाज रे निस दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान काल तौ पहुंचो आन कहां जह पाज रे रहाओ अस्थिर जो मान्यो।

मानो नानक जन एह बखानो जग मैं बिराज रे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। श्लोक सह स्कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सबगल समादं मुख झूठ बिपूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लिलाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कौ नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट न पावै ने फलं तस जन्मस जावद ब्रह्म न बिंदते सागरं संसारस गुर प्रसादी तरह के करण कारण समरथ है कौ नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं जे को जान सपेयो नानक ता को दास है सोई निरंजन देओ एक कृष्णं ता सर्व देवा देव देवा ता आत्मै आत्मं श्री वास देवस जे कोई जान सपेव नानक ता को दास है सोई निरंजन देव। श्लोक सह स्कृति महला पंजवा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता बिनोद सुतै कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कुटुंबियते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत अरहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्ध्यं अचत तनै। त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवै त्रिग स्नेहं बंता बिलास सुतै त्रिग स्नेहं गृहार्थ कहै साध संग स्नेह साध संग स्नेह सत्यं सुखयं बसंत नानकै। मिथ्यंत देहं खीणंत बलं वरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आशा आथित पवनं गणंत स्वासा पयां धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ देहं तत आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा। काच कोटंग रचंत दोयं लेपनंग रक्त चरमण नवंत द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग अस्थंबन। गोविंद नामंग नय सुमरंत अज्ञानी जानंत अस्थरंग दुर्लभ देह उदरंत साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत। सुभंत तोयं अच्युत गुणज्ञं पूर्णं बहुलो कृपाला गंभीरं ऊचै सर्वज्ञ अपारा प्रत्यापरं विश्राम चरणं अनाथ नाथे नानक शरणं। मिर्गी मिर्गी पेखंत बदक परहारेण लख आवदै अहो जासर खेण गोपालै नानक रोमना छेदयते बहु जतन करता बलवंत कारी सिवंत सूरा चतर दिसै बिखम थान बसंत ऊचै नै समरंत मरणं कदांचै। होवंत आग्या भगवान पुरखै नानक कीटी सासया करखते सबदंग रतंग हितं मया कीर्तं कली कर्म कृत्वा मिटंत तत्रागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं। दृष्टत्वं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रयं जाप जपना। कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रव सस्यर नक्षत्र गगनं कटंत बसदा गिर तर से खंडं कटंत ललना सुद प्रात हीतं कटंत कनक मानक माया स्वरूपं नह कटंत केवल गोपाल अच्युत
अस्त्रंग नानक साध जन। नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं प्रावतं धर्म लखन। नानक जे सो प्रसन्न माधव मृत मोहं अल्प बुद्धियं रचंत बनता विनोद साहं। जोबन बहक्रम कनक कुंडल बचित्र मंदर सोभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापतं। हे अच्युत शरण संत नानक ओ भगवान ए नमः। जन्मं ता मरणं हरखं ता सोगं भोगं ता रोगं ऊचं ता नीचं नाना सोमूचं राजं ता मानं अभमानं ता हीनं। परवर्त मार्गं वर्तन्त विनाशनं गोविंद भजन साध संगेण अस्त्रं। नानक भगवंत भजनासनं कृपंता हरियं मत तत् ज्ञानं विकसीद बुद्धा कुशलथानं। बस्यंत रिखियं त्यागमानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं। अरहंत जन्मं हर दर्शलीना बाजंत नानक शब्द बीना। कहंत बेदा गुणंत गुणिया सुनंत बाला बहुविध प्रकारा दृढ़ंत सुविद्या हर हर कृपाला। नाम दान जा चंत नानक दैन हर गुर गोपाला। नह चिंता मात पित प्रात नह चिंता कश लोक कै नह चिंता बंता सुतमीत प्रवृत माया संबंधन। दयाल एक भगवान पुरख है नानक सर्व जी प्रतपालक है। अनित वितंग अनित चितं अनित आसा बहुविध प्रकारं अनित हेतं अहं बंदं परम माया मलनं बेकारं। फिरंत जोन अनेक जठरागन नै स्मरंत मलीन बुद्धियं। हे गोविंद करत माया नानक पत ते उदाहरण साध संग मैं। गिरंत गिर पतत पातालं जलंत दे दीप बै स्वंतर भांता गह तोयं तरंगं। दुखंत ग्रह चिंता जन्मं ता मरण अनक साधनं ना सिद्धिया ते नानक। अस्तंबं अस्तंबं अस्तंबं शब्द साध स्वजन। कोर दुखियं अनकहत्यं जन्म दारिद्रं महाबिख्यादं मिटंत सगल समरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ट पस्मं करोत अंधकार सिमृत प्रकाशं गुणर मंत अग खंडन। हरिद बसंत पै पीत दूत कर्म करत महा निर्मल। जन्म मरण रहंत स्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन। शरण जोगं संत प्रे नानक सो भगवान खेमं करोत। पाशं करोत अग्रणी वै निरासं आस पूर्ण। निर्तन पयं तन मंत रोगियं रोग खंडन। भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन। पार ब्रह्म पुरख दा तार नानक गुर सेवा किं ना लभ्या ते। अतरं तरं तारण निर्तनं तन नाम नर हर। अनाथ नाथ गोविंद बलहीन बल केशव। सर्वभू दयाल अच्युत दीन बांधवदा मोदर। सर्वग पूर्ण पुरख भगवान भगत वच्छल करनामय। घट घट बसंत बास देव पार ब्रह्म परमेश्वर। जाचंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नह बिसरंत नारायण। नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम परखोत्मं तव प्रसाद स्मृते नामं। नानक कृपाल हर हर गुरं। परण पोखण करंत जिया विश्राम शादन देवंत दानं। सृजंत रत्न जन्म चतर चेतन वर्तंत सुख आनंद प्रसाद। सिमरंत नानक हर हर हरे अनित रचना निर्मोहते।
दानं पराबूरबेण पुचंते मही पते विपरीत बुद्धियं मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते। बिरथा अनुग्रह गोविंद जस सिमरन रिदं।

ब्राह्मण संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्मरतं संसार गहं ते नर नानक ने फल पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उचरणं सर्वजी कै लौ लई तृष्णा अतिपत मन माए कर्म करत सासु करै मते समेव चरणं उदरणं पै दुतरै अनेक पात कहरणं नानक साध संगम ना संशय। महला पंजवां गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख देहं मलीणं मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथगर बेण अज्ञानन परमाणु पर जंत आकाश दीप लो से खंडन गशेण नैन पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध्यते जानो सत होवंतो मरनो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साथ चलंथो पढ़ंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधव लब्ध्यं साध संगेण नानक सोख्या स्थानं गोपाल भजनं लब्ध्यं साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैलागर संगेण निम बिरख से चंदन निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध ना बोहते गाथा गुंफ गोपाल कथं मथं मान मर्दन हतं पंच सतरेण नानक हर बाणे परहारण बचन साध सुख पंथा लहंथा बड़ कर्मण अरहंता जन मरणेन रमणं नानक हर कीर्तन पत्र पुर जेण चढ़ियं नह जड़ियं पेड़ संपता नाम बेहूण बिखमता नानक बहंत जोन बसरो रैणी पावनी साध संगेण लबंतं बड़ पागण हर नाम गुण रमणं नानक संसार सागर ने व्यापण गाथा गूढ़ अपारं समझणं बिरला जन संसार काम तजणं नानक गोबिंद रमणं साध संग में सुमंत्र साध बचना कोट दोख बिनासन हर चरण कमल ध्यानं नानक कोल समूह उदाहरण सुंदर मंदर सैण जेण मद हर कीर्तन मुक्ते रमण गोविंद नानक लभद्यंग बड़ भागण हर लभदो मित्र सुमितो बिदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो अबज संग मिटंत सत पुत्र है सिमरतब हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण मरणं बिसरणं गोविंद जीवणं हर नाम त्यावण लबणं साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहून पुयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं व्याद्योपण संतं नानक लब्ध कर्मण जाथ कथ रमणं शरणं सर्वत्र जियण तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यं परा पूर्वण शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेण उदरण संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलै समूह सगले उदारं वडपागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहन लब्ध्यं साध संगेण नानक।

बाद समन जवे इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्ज्यो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जां को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहूं जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादि सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजे गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारिए जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न माने कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बडाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हो फिरे ओ कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हार जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸਲਾ ਵਹਿ ਹਾਟ, ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾਂ ਕੋਠਾ ਕਰ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਪਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਪਾਵੈ ਕਰ ਰਮੁੜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਪੋਏ ਗਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀਂ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਆਰਾਮ ਰਤਨ ਤਾ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ। ਕਬੀਰ ਚੰਖ ਨਾ ਚੰਖੀਐ, ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਕੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪੈਰੈ ਕਾਪਰੇ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਂਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰ ਜਰਾ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਰਪਾਰ। ਕਬੀਰ ਹਾਰਡ ਜਰ

करते हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पियारी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। कबीर हर दी पी रतन हरे चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

आए कबीर ऐसा सतगुर जे मिले तुठा करे पसाओ मुग द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। कबीर नाम है शान ना शापरी नाम है करनी गाओ मत हर पूछे कौन है मेरे जात ना नाओ। कबीर मोहे मरने का चाओ है मरो ता हर कै द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किस हर किया पयो कबीर कबीर। कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै जे मुख निकसे राम ताके पग की पानी मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पुत्रे मानस राख्यो नाओ चार दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। कबीर मेहंदी कर काले आया पीसाए पीसाए तै सह बात ना पूछिए कबो ना लाई पाए। कबीर जेह दरियावत जाते हो हटके नाही कोए सो दर कैसे छोड़ी है जो दर ऐसा होए। कबीर डूबा था पै उबरियो गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जर्जरा तब उतर पर्यो हाँ फर्क। कबीर पापी भगत ना पावई हर पूजा ना सुहाए माखी चंदन पर हरे जय बगंत जाए। कबीर बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवनहार। कबीर राम ना त्यायो मोटी लागी खोर काया हांडी काठ की ना उचरै बहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हास दौरा लीन। कबीर रस को गंडो चूसिए गुण को मरिए रोए अवगुण यारे मानस है पलो न कह है कोए। कबीर गागर जल परी आज काल जय है फूट गुर जो ना चेत अपनो अदमाज ली जय गे लूट। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ गले हमारे जेवरी जय खिंचे तै जाओ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए हृदय राम ना चेत ही ये जपनी क्या होए। कबीर बिरो पुजंग मन बसे मंत ना माने कोए राम बियोगी ना जिये जिये ता बौरा होए। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध तेह मिलते ऊ तुम पहे लो काठ निर्गंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओ नहीं सहया जाए एक जो साधु मोहे मिले ओ तेन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कह हाँ ही भला दारू मेरे वस ए तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस। कबीर नाव बते अपनी दिन दस लिहो बजाए नदी नाव संजोग ज्यो बौर न मिल है आए। कबीर सात समुंदर मस करो कलम करो बन राए बसदा कागज जो करो हर जस लिखन ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल कबीर रमैया कंठ मेल चूके सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए पांचो लड़के मार कह रह राम लियो लाए। कबीर ऐसा को नहीं एहो तन दे वै फूक अंधा लोग ना जान नहीं रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चह चढ़ी सुनो वीर मसान लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। कबीर जा को खोजते पायो सोई ठौर सोई फिर कह तू पया जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर ओह चूले ओह चीरी है साकत संग नहेर। कबीर पार पराई सिर चरै चलो चाहे बाट अपने पारे ना डरै आगे औकट काट।
ਕਬੀਰ ਬਰਕੀ ਦਾਦੀ ਲੱਕਰੀ ਠੰਡੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਮਤ ਬਸ ਪਰੋ ਲੁਹਾਰ ਕੇ ਜਾਰੈ ਦੂਜੀ ਬਾਰ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋਏ ਮੂਏ, ਦੋਏ ਮਰਨ ਤੈ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮਰਨ ਤੈ ਸ਼ੈ ਮੂਏ, ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋਏ ਨਾਰ। ਕਬੀਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ, ਕਹੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਠਾਉਰ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਕਹਾਂ ਭੁਲਾਨੇ ਔਰ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਅੰਤ ਕਰੈ ਨਿਰਵਾਹੋ, ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਹੋ। ਕਬੀਰ ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਨਕੈ, ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਬੰਦੈ ਜਨਮੇ ਆਏ। ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ, ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ, ਨਰਕ ਪਰੈ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀ ਉਹ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕਉ, ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਸਹਾਇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਲੀ ਪਗ ਧਰੋ, ਸੋਈ ਮੁਰ ਮੁਰ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਹੈ ਕਉ ਉਪਦੇਸ ਤੇ, ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ, ਖਾਇਆ ਕਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜੋ ਕੀ ਪੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਨ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤ, ਸਾਗਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਤੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਤਨ ਤਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਬੇਦਿਆ, ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਓ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ, ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ, ਚੰਤ ਬੇਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਚੱਲੇ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਜਾ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੁਬੇ ਚਾਉ ਬੇਦ ਮੈਂ, ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ, ਰਾਖੇ ਤਲੈ ਦੁਰਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਿਦਾਨ ਸਭ, ਜਾ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੈ, ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੰਬ, ਧੰਦਾ ਕਰਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਰਹਿਆ ਨਾ ਬੰਦ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੈ, ਰਾਤ ਜਗਾਵਨ ਜਾਏ, ਸਰਪਨ ਹੋਏ ਕੈ ਉਤਰੈ, ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੈ, ਅਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰ, ਗਧੀ ਹੋਏ ਕੈ ਉਤਰੈ, ਪਾਰਸ ਹੈ ਮਨ ਚਾਰ। ਕਬੀਰ ਚਤਰਾਈ ਅਤ ਕਨੀ, ਹਰ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ, ਸੂਰੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਠਾਹਰ ਨਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਤਨ ਹੈ, ਜਾਮੁ ਕਹੀਐ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ, ਜਾਂ ਕੁਲ ਹਰ ਕੋ ਦਾਸ, ਜੇ ਕੁਲ ਦਾਸ ਨ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਕਬੀਰ ਹੈ ਗਏ ਬਾਹਨ ਸਗਨ ਕਾਨੋ, ਲਾਖ ਧਜਾ ਫਹਿਰਾਏ, ਇਆ ਸੁਖ ਤੇ ਭਿਖਿਆ ਭਲੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦਿਨ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਜਗ ਹਉ ਫਿਰਿਓ, ਮੰਦਲ ਕੰਧ ਚੜਾਏ, ਕੋਰੀ ਕੋਈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇਖੀ ਠੋਕ ਬਜਾਏ। ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ, ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ, ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸਗੀ, ਜਗਤੋਂ ਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਬੁੱਢਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ, ਉਪਜਿਓ ਪੂਤ ਕਮਾਲ, ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੈ, ਕਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਐ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ, ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਐ, ਆਗੈ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜਗ ਬਾਂਧਿਓ ਜਿਹ ਜੇਵਰੀ, ਤਿਹ ਮਤ ਬੰਧੋ ਕਬੀਰ, ਜਹੈ ਆਟਾ ਲੋਣ ਜਿਉ, ਸੋਨ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰ। ਕਬੀਰ ਹੰਸ ਉਡਿਓ ਤਨ ਗਾਡਿਓ, ਸੋ ਜਾਈ ਸੈ ਨਾਹਾ, ਅਜਹੂ ਜਿਉ ਨਾ ਛੋਡਈ, ਰੰਕਾਈ ਨੈ ਨਾਹਾ। ਕਬੀਰ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰੋ ਤੁਝ ਕਹੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਨੋ ਤੋ ਨਾਓ, ਬੈਨ ਉਚਰੋ ਤੋ ਨਾਮ ਜੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਧ ਠਾਓ। ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰਿਆਦ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕਉ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਕਹੋ, ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ ਪਤੀ ਆਏ,
हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चातरक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देस उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साक्त संग ना कीजिए दूर जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीर आराम ना चेतियो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक है सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहर तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागद की ओबरी मस्के कर्म कपाट, पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंता अब है कार, अब करता सोए ताल, पाछे कछु न होएगा जब सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जनतिक देखिया जैसी तोई लाख, दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध कहो जम ना करे तिस्कार, जिन एहो जमुआ सिरजिया सो जपया परवदगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पए सबदास, ज्यो ज्यो भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गज परयो कुटुंब कै कंठ रह गयो राम, आए परे धर्म राय के बिचे तू माताम। कबीर सागते सूकर पला राखे अच्छा गाओ, ओ सागत बपरा मर गया कोई न लह नाओ। कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोर, चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर। कबीर बैसरों हुआ ता क्या पया माला मेली चार, बाहर कंचन बारहा पितर परी पंगार। कबीर रोना होए रहो बाट का तजमन का अभमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा

हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊच पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पाला राम भगत जेठाए राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओढ़ हीरा किसका बापरा पुज नारतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजीता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए मान मुनि मुनमर गरे मान सबै को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोई मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक न लाग गई जो बस बजाइए फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पुजय हर जन की पनिहार। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी को मान ओ मांग सुवार बिखे को ओ सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जहोरी लेके मंड हाट जब ही पाइए पारखू तब हीरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिय ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहोरे बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाज सी जबले तरह मसान। कबीर डूबे गोरे बापरे बहु लोगन की कान पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है निर्दावे रह निसंक जो जानो निर्दावे रह सो ग्रह इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते तारे खिसे त्यों एहो खिसे शरीर ए दो अखर ना खिसे सो गह रहो कबीर। कबीर कोठी काठ की दैदस लागी आग पंडित जल मुए मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसा दूर कर काग दे बिहाए बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत ना छड़े संतई जो कोट कमले असंत मलयागर भुजंगम बेड्यो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पाया ब्रह्म ज्ञान जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोए कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परिया दिशा गई सब पूल ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देह दिवस चार को पेखना अंत खेहे की खेहे। कबीर सूरज चांद कै उदय पही सब देह गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पही सब खेह। जह अन पौ तह पह नहीं जह पौ तह हर नाहे
कहो कबीर विचार के संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए, हमो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और, लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले ओ सास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा साई ना बैरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या अज काबे जाए, कबीर जा की दिल साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगटै बुझै बलंती नाए। कबीर जोर किए कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाव हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जा मैं अमृत लोन, हीरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटै मोह तन ताप, हर सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सब कह है सोई कौतकार। कबीर राम मैं राम कहो कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारखे भूत बसै तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सतगुरबान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकरे जे शेक। कबीर निर्मल बूंदिया काश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंदिया काश की लीनी पूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझसे लर परिया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ में क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जो

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हुके ना है, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चढ़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे, नानक सो साला ही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाहकी, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ी, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर सातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहन क्यों करो सब कर देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं घट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल कै ना खल पई ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अरचिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ते नर दोजग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

फरीदा दिल दत्ता इस दुनी स्यों दुनी ना कितै काम मिसल फकीरां गाखड़ी सो पाईए पूर करम पहले पहरे फुलड़ा फल पी पच्छा रात जो जागन लहन से साई कन्नो दात दाती साहेब संधिया क्या चले तिस नाल इक जागन दे ना लहन इक ना सुत्या दे उठाल ढूंढें दिए सुहाग को तौ तनकाई कोर जिन्ना नाम सुहागनी तिन्ना चाक ना होर सबर मंज कमान ए सबर का निहुणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन ए वै जालेन हुन जी खुदाई दै भेत न किसै देन सबर एहो सुवाओ जे तू बंदा दिड़ करै वद थी वै दरियाओ टुटना थी वै वाहड़ा फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत इकन किने चाली है दरवेसा वी रीत तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन पैरी थका सिर जुला जे मूह प्री मिलन ताना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हाउ ढूंढें दी सजना सजन मैंड नाल नानक अलख ना लखिए गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरन दया बग्गा आया चाओ डुब मोए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ मैं जानिया वडहंस है ता मैं कीता संग जे जाना बग बपड़ा जन्म ना पेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरे जित पावे नानका का गो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास एहो तन लहरी गट थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वे सो हौ करी जित वस आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैने वे सकार ता वसिया वीकंत मत होंदी होए इयाणा तान होंदे होए निताणा अण होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक फिका ना गालाए सब नाम है सच्चा तनी हयाव ना कही ठाहे माणक सब अमोलवे सबना मन माणक ठाहन मूल मचांगवा जे तो प्रिया।

विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर, परै ही ते परै अपरे अपार पर, आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार, ओपत परलो एक है निमख तो कर, आन नाही समसर उजियारो निर्मर, कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जिह क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे, पूर रहो सर मैं आप है निरारे, हार गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही तारण तारे कुदरत है देखारे, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्व गुण निधान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान, मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान, कौन उपमा देओ बड़े ते बडान, जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ, अकल कला है प्रभ सर्व को तान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जिही क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार, निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी, हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी, गुण गावे बेअंत अंतिक तिल नहीं पासी, जा कह होहे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो, हर गुर नानक जन परसयो से जन मरण दो थे रहो, सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिय, दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिया, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जेहे रसन चाखेओ तेहे जन तृप्त गाए, जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सतसंग ते प्यार, हर गुरु नानक जन परसयो दिन सब कुल कियो उधार, सच सभा दीवान सच सच्चे पै तरयो, सच्चा तख्त निवास सच तपावस करयो, सच सिरजियो संसार आपया पुल ना पुलो, रतन नाम अपार कीम न पवै अमलो, जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हू पाए, हर गुरु नानक जिन परसियो ते बौड़ फिर जो ना आए, कवन योग कवन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए, सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकी मना परिए, ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत ना पाए, अगाव गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए, जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते, हर गुरु नानक जन परसयो ते इत्युत सदा मुक्ते, प्रभ दाताओ दातार परयो जाच के कसरना, मिले दान संतरेन जेह लग पौ जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावै, देहो दर्श मन चाओ भगत्यो मन ठहरावै, बलियो चिराग अंधियार मैं सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म, सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, काची देह मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील कुग्यानी, तावत परमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी, जोबिन रूप माया मदमाता विचरत बिकल बड़ो अभमानी, पार तान पारे अपवाद नार निंदा यह मिठी जी माए हितानी, बल बंच शब करते पावा पेक्त संत प्रभ अंतर जामी,
ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬੇਦਾਰਨ ਕਹੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵੈ ਬਿਦ ਕੁਲੈ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹੋ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਨ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਤਾਂ ਮੂਰਤ ਕਰੀ ਚਸਾ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਉ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਧਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ ਬੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ਵਰਧਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਹਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਕਰੀ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭਰਮ ਪਰੀ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਚੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰਮਤ ਕੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੋਹ ਬਡਿਓ ਸੋ ਕਹਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰ ਮਮ ਅੰਕਰ ਬੀਤ ਤਿਉਧ ਕਰਤ ਅਗਨਾ ਮਿਰਤ ਮਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਤ ਪੁਖਤ ਪੂਖ ਪੁਖਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ ਦੇਹਨ

करै ते नर सह सह समप ते नर दुलीचे बह ते नर उथप बिथप सुख लह ते नर संसार में अपह पट रिप मद ते सक्याथ ते नर जालप भण गुर अमरदास सो प्रसन्न जेहे तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाण्यो नैन बैन मोहे एक एक दो ठाए ना जाण्यो सुपन एक परतख एक एक समय लीणो तीस एक अर पंज सिद्ध पैतीस ना खीणो एक जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरण्यो गुरे अमरदास जल पणे तू एक लोड़ै एक मन्यो जे मत गही जय देव जे मत नामै सम्माणी जे मत त्रिलोचन चित भगत कभी रह जानी रुक मांगत करतूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सुमत जल जानी जुगत गुरे अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त गुर अमरदास परसिय पहुं पातक बेनासै गुरे अमरदास परसिय से सदके आसासै गुरे अमरदास परसिय ध्यान लइए पौ मुके गुर अमरदास परसिय अपौ लब्बै गौ चुके एक बिन दुगण जो तौ रहै जा सुमंत्र मानवै लहै जाल पा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठै मिलै सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहे हो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरण लिव रहे हो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमण वखाणो जो गुण अलाख्या गम तिने गुण अंत न जाणो बोई थो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उदरण गुर अमरदास कीर्त कहै त्राहे त्राहे तो पासरण आप नारायण कलातार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जय कहते हैं परपूर सब दीपक दीपायो जे सिखै संग्रहयो तत हर चरण में लायो नानक कुल निम्बल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख सरण परै ते उबरै छोड़ जमपुर की लिख भगत पाए भरपूर हृदय उचरै करतार गुर गौहर दरियाओ पलक डुबन त्य तार नानक कुल निम्मल अवतरियो गुण कर तार उचरै गुर अमरदास जिन सेव्यो तिन दुख दरिद्र पर हर पर चित चितवो अरदास कहो पर कह पह ना सको सर्व चिंत तुझ पास साध संगत हौ तको तेरे हुकुम पवै निशान तव करो साहिब की सेवा जब गुर देख शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावै सो कहो गुर अमरदास कारण करन जिव तू रख तिव रहो पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावै सच सच जानिए एक चित्तै लिवलावै काम क्रोध वस करै पवन उडंत न तहावै निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ विचार पावै कल माहे रूप करता पुरख सो जानै जिन किश कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहै सहज रंग दर्शन दियो रहयो संत हौ टोल साध बहु तेरे डिठे सन्यासी तपसी है मुखों ए पंडित मिठे बरस एक हों फिर किने नो पर चौलायो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुण हों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो पहर समाध सुनाहो ज्ञान है आसन चढ़ियो धर्म तनख कर गहयो भगत सीले सर लड़ियो पै निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्यो
काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ। पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार, गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर। कन हर बूंद बसोरो मावल, कुसुम बसंत ग्रंत न आवै। रव सस्करण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन पल उन्ह जो गावै। पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। सवैये महल्ले चौथे के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक मन पुरख निरंजन त्यावो, गुर प्रसाद हर गुण सदगावो। गुण गावत मन होए बिगासा, सतगुर पूरज ने की आसा। सतगुर से परम पद पायो, अब नासी अब गाते आयो। तिस भेटे दर दरना चंपै, कल सहार तास गुण जंपै। जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे, अमे नाम जा को फुरिया। इन सतगुर सेव शब्द रस पाया, नाम निरंजन और धरिया। हर नाम रस गोविंद गुण गाहक, चाहक तत् समत सरे। कब कल ठकर हरदास तने, गुर रामदास सरा पर परे। छुटत प्रवाह अमे अमरा पद, अमृत सरोवर सद भरिया। ते पीवै संत करै मन मज्जन, पुब जिनो सेवा करिया। तिन पहु निवार अन पै पादीना, शब्द मात्र ते उदर धरे। कब कल ठकर हरदास तने, गुर रामदास सरा पर परे। सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत, आत्म रंग चलूल पया। जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया, अपै निरंजन करै लहा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, तिस प्रसाद वस पंच करे। कव कल ठकर हरदास तने, गुर रामदास सरा पर परे। अन पौ उन्मान अकल्यव लागी, पारस पेटिया सहज करे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत पाए भंडार परे। मेटिया जन्मात मरण पौ भागा, चित लागा संतोख सरे। कव कल ठकर हरदास तने, गुर रामदास सरा पर परे। अपर परे पायो अपार, हृदय अंतर तारियो। दुख पंजन आत्म प्रबोध, मन तत् विचारियो। सदा चाहे हर पाए, प्रेम रस आपे जाने। सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने। नानक प्रसाद अंगद समात, गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कलुचरै तैं अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै। मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै। सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै। संजम सत संतोख सील सनहु फुटै। सतगुर प्रमाण बिद न सिरयो, जग जस तूर बजायो। गुर रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो। जग जितो सतगुर प्रमाण, मन एक ते आयो। तन तन सतगुर अमरदास, जिन नाम दृढ़ायो। निव निद नव निद नाम निधान, रिद्ध सिद्ध ता की दासी। सहज सरोवर मिलियो, पुरख भेटियो अबनासी। आदले भगत जित लग तरे, सो गुर नाम दृढ़ायो। गुर रामदास कलुचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो। प्रेम भगत प्रवाह, प्रीत पुबली ना हुटै। सतगुर शब्द अथाह, अमे तारा रस गुटै। मत माता संतोख पिता, सरसै समायो। आजोनी संपावयो, जगत गुर बचन तरायो। आप गात्या गोचर अपर पर, मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कलुचरै तैं जगतो धारण पायो। जगतो धारण नाम निदान, भगतै पवतारण। अमृत बूंद हर नाम, बिसकी बिखै निवारण। सहित रोवर फलयो, ज्ञान अमृत फल लागे। गुर प्रसाद पाईऐ तन ते जनवट पागे। ते मुक्ते पए सतगुर शब्द, मन गुर परचा पायो। गुर रामदास कलुचरै तैं शब्द निशान मजायो।
से सदा सहिशावान संतोख से राय चौ सदाशील सन्नाहो सो है गुर शब्द समाचर्यो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया मालो सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम्हू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लेव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कथ होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता अहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दृद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म करम पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जान को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना दंडकाल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सो अपार सार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम